मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ान EIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। आज बुधवार है, शक्सवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई सन 2026, 5:57 होने वाले हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 305.8 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज़ और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन सकते हैं। 6 बजने वाले हैं हिंदी में समाचार, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं, विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र, यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी दो दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, शुभारंभ मातृ वंदना से।

समूह स्वर में ये थी अंजुमन बानो की देशभक्तिपूर्ण रचना। आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडकर के स्वर में दत्ता थीटे की ये रचना।

सुरेश वाडकर के स्वर में ये थी दत्ता थ्रीटे की रचना। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आइए अब सुनते हैं रमजान शाह की आवाज में फाजिल बरेलवी की ये नात।

रमज़ान शाह की आवाज़ में थी फाजिल बरेलवी की नात। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायवाली केंद्र से। आइए अब सुनते हैं केएल सहगल के स्वर में ये भक्ति पद।

KL सहगल के स्वर में ये भक्ति रचना अभी आपने सुनी। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी के स्वर में मधुकर राजस्थानी की ये रचना।

मोहम्मद रफी के स्वर में ये थी मधुकर राजस्थानी की रचना। आइए अब सुनिए असीत देसाई के स्वर में ये भजन।

0: असीत देसाई के स्वर में ये था संत तुलसीदास का भक्ति पद। इसके साथ ही अब आज की वंदना संपन्न होती है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। लीजिए सुनिए चिंतन, आलेख डॉक्टर आनंद यादव का है।
1: एक राष्ट्र की सुदृढ़ता उसके नागरिकों की प्रगति या समृद्धि पर नहीं बल्कि उनकी सकारात्मक मानसिकता यानी हृदय में विद्यमान परस्पर एकता और अखंडता की भावना पर

0: निर्भर करती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुसार स्वतंत्र हो जाने पर यदि हम एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहते हैं तो यथार्थ में कठोर परिश्रम करना होगा। राष्ट्रीय एकता और संगठन को विकसित करने के लिए अनेक बातों की आवश्यकता है, जैसे सामान्य भाषा, वेशभूषा, व्यवहार इत्यादि। 1942 में बंगाल विधानसभा के लिए निर्वाचन के बाद बाबा साहब ने भारत एक हो का अमर नारा दिया था। हमारे संविधान के प्रस्तावना में हम भारत के लोग संबोधन द्वारा राष्ट्रीय एकता और अखंडता की स्थापना की गई है। प्रथम भाग के प्रथम अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भाग चार में अनुच्छेद 13 से 36 तक प्रत्येक नागरिक को बिना किसी आधार पर भेदभाव अथवा पक्षपात के समान रूप में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द भी सम्मिलित किया गया। स्वतंत्रता से आज तक भाषावाद, जातिवाद आदि नकारात्मक प्रवृत्तियां राष्ट्र की एकता और अखंडता के समक्ष चुनौती स्वरूप विद्यमान है। आतंकवाद जैसी समस्याएं हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव, निष्ठापूर्ण दायित्वों और कर्तव्यों का अनुपालन न किए जाने का स्पष्ट द्योतक है। परिवार राष्ट्र रूपी भवन का आधार तल है, इसलिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता से पूर्व सर्वप्रथम हमें पारिवारिक एकता अखंडता के लिए सार्थक प्रयास करने होंगे। शासन और प्रशासन से अपेक्षा से पहले स्वयं द्वारा इसके लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। हमें प्रतिक्षण दिग्भ्रमित और विभाजित करने वाले राष्ट्र विरोधी तत्वों से सावधान रहना होगा, तभी हम एक अखंड राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। महान आचार्य कौटिल्य प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने न केवल अखंड भारत का स्वप्न देखा बल्कि उसे कार्य रूप में परिणित करके व्यवहारिक रूप प्रदान किया। जिस अद्भुत एकता का परिचय देशवासियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित होकर दिया, उसी एकता की हमें आज भी आवश्यकता है। लाला लाजपत राय की राष्ट्रीय एकता की धारणा केवल हिंदू मुस्लिम एकता तक ही सीमित नहीं थी। वे इसके साथ साथ सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी आदि सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते थे। उनकी कल्पना का भारत न तो हिंदू राष्ट्र था और न मुस्लिम, न ईसाई या सिख राष्ट्र। यही हमारा प्रथम धर्म और कर्म है कि हम अमर शहीदों, राष्ट्रभक्तों के सपनों को साकार करने में अपना योगदान दें और देश को सशक्त और समृद्ध बनाएं।
1: ये था चिंतन, आलेख डॉक्टर आनंद यादव का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए रामचरित मानस गान, मुख्य स्वर अनुराधा पौडवाल का है। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया।
2: एपिसोड नंबर 224।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थी, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहां संभव है।

0: अभी आप रामचरित मानस गान सुन रहे थे। मुख्य स्वर अनुराधा पौडवाल का था। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत निदेशक हैं सतीश भाटिया। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। हमारा पशुधन इस कार्यक्रम में विषय है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना पशुपालन का यंत्रीकरण। जानकारी देते हुए डॉक्टर आशुतोष दुबे।
1: सभी कृषक एवं पशुपालक बंधुओं को सादर नमस्कार। आज जिस विषय पर अपन चर्चा करने वाले हैं वो विषय है पशुपालन का यंत्रीकरण की अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन जो है किसानों की आय का प्रमुख स्रोत होता है। दूध, मांस, अंडा तथा अन्य पशु उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते

0: में इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि जो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना होती क्या है। तो अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जैसे कि जिसको अंग्रेजी में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं, जो कि नई दिल्ली में है, वो एक जो परियोजना है संचालित करती है, जो कि देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों को मिलाकर के चलाया जाता है, जिसके माध्यम से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नई तकनीकों का विकास एवं परीक्षण किया जाता है। जैसा कि पशुपालन का यंत्रीकरण है, इस अनुसंधान परियोजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है, पशुपालन में श्रम की आवश्यकता को कम करना, पशुओं की कार्य क्षमता बढ़ाना, उत्पादन लागत घटाना ताकि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो सके, ज्यादा से ज्यादा आमदनी मिल सके, पशुओं के स्वास्थ्य एवं कल्याण में सुधार करना एवं कुल मिलाकर के जो कृषक बंधु है उनकी आय को बढ़ाना। तो इस परियोजना में मुख्य ये रहता है कि इस तरह के यंत्र बनाएं, इस तरह की मशीन बनाएं, जिससे कि जो पशुपालक हैं, खासकर जो छोटे और मध्यम पशुपालक हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा जो खाद्य पदार्थ है उसकी प्रोसेसिंग में, इसके अलावा जो उनका उत्पादन हो रहा है उसमें, तो मुख्यतः इसको तीन भाग में बांटा जाता है। जो ये परियोजना चल रही है पशुपालन का यंत्रीकरण, इसको तीन भाग में बांटा जाता है। पहला पार्ट होता है ट्रीटमेंट पार्ट। तो इसमें ये आता है कि जैसे कोई भी पशुधन है, भले ही गाय, बैल, भेड़, बकरी, सुअर या मुर्गी कोई भी हो, पहला होता है ट्रीटमेंट पार्ट। तो ट्रीटमेंट पार्ट मतलब चिकित्सा पार्ट। तो इसमें ये है कि यदि कोई पशु बीमार है तो यंत्रों के माध्यम से कैसे उसको जल्दी से जल्दी अपन उस तक अच्छे से अच्छा इलाज पहुंचा सके, और इसके अलावा इलाज का दूसरा होता है डायग्नोसिस का, कि यदि कोई पशु बीमार है तो अपन किस तरह से यंत्रों का उपयोग करके उनकी बीमारियों का जल्द से जल्द पता लगा सके, ताकि बहुत जल्दी अपन उनको बीमारी से राहत दे सके और इलाज दे सके। दूसरा होता है मैनेजमेंट पार्ट या एनिमल हस्बेंड्री पार्ट या प्रबंधन वाला पार्ट। तो इसमें यह है कि जहां पर अपन पशुओं को रखे हैं उनके रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके प्रजनन की व्यवस्था और उनके जो पालन पोषण की व्यवस्था है वो इस तरह से रहे कि उनको एक अच्छा जो है वातावरण मिले, जहाँ पे वो पशुधन है वो ज्यादा से ज्यादा अपना उत्पादन दे सके। मतलब जैसे अनुकूल वातावरण में अपन उनको अच्छे घर में रखते हैं, अच्छा आहार रहता है, तो निश्चित ही इससे किसानों को लाभ मिलेगा। तीसरा जो होता है वो प्रोसेसिंग पार्ट का है। जब हार्वेस्टिंग हो गई, अपने को प्रोडक्ट मिल गए हैं, जैसे दूध हो गया या मांस हो गया या अंडा हो गया, तो इस तरह के जब प्रोडक्ट अपने को मिल गए हैं तो उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से की जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसमें पशुपालक है उनको इसमें आमदनी मिल सके। इस तरह अपन देखते हैं कि आज के समय में मजदूर जो श्रमिक मिलना है काफी कठिन होता जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में भी फिर यहाँ पे यंत्रीकरण के उपयोग पहले भी साबित हो चुका है, तो उन यंत्रों के माध्यम से अपन जो मजदूरों की कमी है उसको दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जो मजदूरी की लागत बढ़ रही है तो उसको अपन यंत्रों के द्वारा कम कर सकते हैं, समय की लागत को भी अपन कम कर सकते हैं। दूध उत्पादन में तो बढ़ोतरी होती ही है। इसके अलावा जो पशु जो रहते हैं उनपे यदि अपन सही तरीके से पालन नहीं करते हैं तो वो भी तनाव में आते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य और उत्पादन में विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए भी अपन यंत्रीकरण के माध्यम से इनको पशुओं को स्वास्थ्य और बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।
1: अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना पशुपालन का यंत्रीकरण, जानकारी दे रहे थे हमारा पशुधन कार्यक्रम में डॉक्टर आशुतोष दुबे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। स्पोर्ट्स स्क्रीन कार्यक्रम रात 8:30 पर और चर्चा का विषय है रात 9:30 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। फिल्म संगीत रात 10:00। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ की 8वीं कड़ी में पौधरोपण से जुड़े देवेंद्र सूरा पर केंद्रित कार्यक्रम सुनेगा आज दोपहर 2:30 पर। नमस्कार रायपुर, इस सूचनात्मक कार्यक्रम सुनेंगे सुबह 7:05 पर। आपके पत्र श्रोता पत्रों पर केंद्रित हमारा साप्ताहिक प्रसारण सुनेगा सुबह 8:30।

पर गांधी चर्चा सुबह 9 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:40 और रात 8:15 पर सुनेगा आशा सिंह मस्ताना को। इसी कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर सुनेगा अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को और शाम 6:30 पर कलाकार होंगे चंद्रकांत गंधर्व। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10 बजे सुनेगा पंडित अरुण कुमार भादुड़ी का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी में ख्याल। रात 10:30 पर इसी कार्यक्रम में सुनेगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग कलावती। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो, हमारा साप्ताहिक प्रसारण सुनेगा सुबह 11:05 पर। बढ़ते जन घटता जंगल ये रूपक सुनेगा दोपहर 1:30 पर लेखिका अनिता सावंत और प्रस्तुति मोहन सी रामानी की। शाम 5:10 पर युवाणी में युवा साथी आज सुनेंगे आजकल सफलता सुविधा की मोहताज नहीं होती, इस विषय पर चर्चा पत्र मिला और युगल गीत। शाम 7:21 पर किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल, किसान भाई आज सुनेंगे आज की बात पत्रोत्तर कार्यक्रम चिट्ठी मिलिस मौसम पूर्वानुमान खेती में लाभकारी और उपयोगी, इस विषय पर जानकारी। आज की सलाह इसमें विषय होगा खरीफ प्याज की उन्नत खेती, जानकारी देंगी दीपिका चंद्रवंशी। विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT दोपहर 12:00। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट शाम 5:00। चित्रपट संगीत का आनंद लेंगे सुबह 9:15, 10:30, दोपहर 1:05, 2:00, शाम 7:00, रात 8:00 और रात 9:15 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:55 होने वाले हैं। आइए सुनते हैं समाचार, पहले संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। भारत इण्डोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढाह्वानं कुर्वन् प्रधानमन्त्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शान्ति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य संसदं सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गम् अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमन्त्री मोदी जकार्ता नगरे इण्डोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्याम् परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणाम् आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियान्तो इत्यनेन इण्डोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्ताङ्ग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अन्ताराष्ट्रिय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उत वा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आन्तरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं सम्बोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरण

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे

0: तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 305.81 मीटर अर्थात 981 किलोहर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत है सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर।

श्रोता दोस्तों, कैसे हैं आप। राजधानी रायपुर में 2-3 दिन की बारिश के बाद भले ही आज आसमान साफ दिखाई दे रहा है, किंतु मेघ के बरसते ही पेड़ पौधों में जान आ गई है। शनै शनै धरती की हरियाली चादर उड़ती, वर्षा यानी एक आशा, एक उम्मीद और नवचेतना का संचार। मित्रों, इस खरीफ सत्र में भले ही बारिश की शुरुआत विलंब से हुई हो, पर देर आयद दुरुस्त आयद, भीषण गर्मी से हलाकान परेशान सारे प्राणी जगत में उत्साह का संचार हुआ है। हर चेहरा प्रफुल्लित, हर होठों पर मुस्कान है। खेतों में श्रम के गीत गाते किसान और छम छम नाचती वर्षा की बूंदें एक ऐसा वातावरण बनाते हैं कि ये दिल गा उठता है ये तराना।

0: ईसगढ़ नेत्र चिकित्सालय
1: आंखों की सभी तरह की जांच और मोतियाबिंद का ऑपरेशन फेको पद्धति से बहुत कम दरों में।
2: पहले से नाम लिखवाने की कोई जरूरत नहीं, जब आएं पूर्ण जांच करवाएं।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
2: 47 सालों से निरंतर सेवा में
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर, गुरुद्वारा रोड, तेली बांधा, रायपुर।
3: श्रोताओं, हम आपको बता दें, सोमवार 13 जुलाई को प्रसारित होने वाले हेलो युवाणी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज बुधवार को सुबह 11 बजे से 11:30 तक की जाएगी। हमारा फोन नंबर है 400-3482-400-3483-400-3483-400-3484-400-3484। रायपुर का एसटीडी कोड है 0771-0771। तो फोन करिएगा आज सुबह 11 बजे। श्रोता मित्रों, मानसून में देरी से घबराएं नहीं, समय पर करें धान की रोपाई बुआई, ये सलाह है कृषि वैज्ञानिकों की। प्रदेश में इस वर्ष मानसून सामान्य से कुछ देर से पहुंचा है, लेकिन किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी भी धान की खेती के लिए पर्याप्त समय है। मौसम को देखते हुए किसानों को कुछ जरूरी कृषि सलाह जारी की गई है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि किसान 15 जुलाई तक धान की सीधी बुवाई और 30 जुलाई तक रोपाई और ब्यासी का कार्य कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश थोड़ा विलंब भी हो जाए और हरेली त्योहार यानी 12 अगस्त तक बुवाई रोपाई करनी पड़े, तब भी फसल पर अधिक असर नहीं पड़ेगा। मानसून में देरी को देखते हुए किसानों को कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्में बोने की सलाह दी गई है। किसानों से कहा गया है कि बुआई से पहले बीज का फफूंद नाशक दवा से खेत को खरपतवार मुक्त कर लें। कृषि वैज्ञानिकों ने हरी खाद और जैव उर्वरकों के उपयोग पर विशेष जोर दिया है। मित्रों, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, किसानों की खुशहाली से देश की खुशहाली है। तो समय की नजाकत को समझते हुए बढ़ चलें कर्तव्य पथ की ओर और सुने ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, आपकी समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी निदान के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। ई जागृति पोर्टल उपभोक्ता मामलों से जुड़ी शिकायत दर्ज करने से लेकर सुनवाई और फैसले तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध कराता है। ई जागृति उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसमें उपभोक्ता की शिकायत दर्ज करना, दस्तावेज जमा करना, ऑनलाइन सुनवाई में शामिल होना, कैश ट्रैक करना और आदेश प्राप्त करना एक ही पोर्टल पर संभव है। पूरी प्रक्रिया पेपरलेस है। इसकी शुरुआत जनवरी 2025 में की गई थी। हम आपको बता दें, यदि किसी दुकान अथवा किसी स्टोर से खरीदा गया सामान खराब निकले, सेवा में कमी हो, ऑनलाइन खरीदी में धोखाधड़ी हो, वारंटी का पालन न हो, गलत बिलिंग, रिफंड न मिले या भ्रामक विज्ञापन से नुकसान हुआ हो, तो उपभोक्ता इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसकी मामूली फीस जमा करनी होती है। इसके तहत घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पोर्टल पर मोबाइल नंबर और ईमेल से रजिस्ट्रेशन करें, फिर लॉगिन कर ई दाखिल विकल्प चुनें, शिकायत का विवरण भरें, खरीद का रसीद, अन्य दस्तावेज अपलोड करें, निर्धारित शुल्क जमा करें। शिकायत दर्ज होते ही केस नंबर मिल जाता है, जिससे पूरी कार्रवाई ऑनलाइन ट्रैक की जा सकती है। शिकायत दस्तावेज सुनवाई और केस की स्थिति ऑनलाइन उपलब्ध होती है। मित्रों, इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के होनहार बच्चों को अब डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना पूरा करने में आर्थिक परेशानी बाधा नहीं बनेगी। भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की अटल कैरियर निर्माण योजना के तहत विज्ञान संकाय में 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को IIT, JEE, CGPET, NEET और UG जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक वर्ष की निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग दी जाएगी। योजना का उद्देश्य श्रमिक परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर उपलब्ध कराना है। अब श्रमिकों के बच्चों को IIT, JEE, CGPET, NEET, UG की मुफ्त कोचिंग सुविधा मिलेगी। आवासीय सुविधा लेने पर हॉस्टल, पौष्टिक भोजन, किताबें, नोट्स, बैग मुफ्त प्राप्त होंगे। वहीं गैर आवासीय विद्यार्थियों को मुफ्त कोचिंग, अध्ययन सामग्री और एक समय अल्पाहार की सुविधाएं मिलेगी। कोचिंग सेंटर के पास किराए या पीजी में रहने वाले विद्यार्थियों को प्रति माह 5,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। आवेदन केवल ऑनलाइन ही किए जा सकेंगे। श्रमिक विभाग की वेबसाइट, श्रम में उज्जैती मोबाइल ऐप, लोक सेवा केंद्र या नजदीकी श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। तो मित्रों, उठाएं योजना का लाभ और सुने ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, सूचनाओं की कड़ी में हम आपको बता दें कि प्रदेश की सभी सरकारी अस्पतालों में 14 साल तक की किशोरियों को मुफ्त में HPV का टीका लगाया जा रहा है। हाल ही में मीडिया के प्रकाश में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 10,000 में से 10 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ग्रामीण महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर और शहरी तथा आर्थिक रूप से संपन्न महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के मामले सबसे अधिक ज्यादा देखे जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 14 वर्ष तक की बालिकाओं को HPV वैक्सीन मुफ्त में लगाई जा रही है। बताया जाता है कि ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ा कारण कम उम्र में शादी होना और स्वच्छता मेंटेन न करना इस बीमारी की प्रमुख वजह है। वहीं शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की प्रमुख वजह देरी से शादी, बच्चों को स्तनपान न कराना और बदलती जीवन शैली तथा गलत खान पान है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जांच न होने से बीमारी दूसरे से तीसरे स्टेज पर पहुंच जाती है, जिससे इलाज बेहद जटिल हो जाता है। तो समय रहते सेहत का रखें ध्यान और सुने ये खूबसूरत गीत।

श्रोताओं, प्रदेश में पिछले दिनों अच्छी खासी जो बारिश हुई है उसके चलते राजधानी की जीवनदायिनी खारून नदी आषाढ़ के महीने में ही लबालब होकर बह रही है। नदी में जल का प्रवाह अत्यधिक तेज होने के कारण प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से महादेव घाट पर नौका विहार यानी बोटिंग और लक्ष्मण झूला को आगामी आदेश तक बंद कर दिया है। नदी के मनोहारी प्रवाह और छठा का आनंद लेने महादेव घाट पर प्रतिदिन लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। मौसम विभाग द्वारा लगातार जारी बारिश की चेतावनी के बीच सुरक्षा कारणों से खारून नदी में खास सतर्कता बरती जा रही है। मित्रों, इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

0: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय।
1: आंखी के जम्मू प्रकार के जांच और मोतियाबिंद के ऑपरेशन फेको विधि ले बहुत कम दरमा।
0: पहली ले नाम लिखवाए के जरूरत नहीं है, तुरते आओ पूरा जांच कराओ।
1: आज ही ऑपरेशन, आज ही छुट्टी।
0: 47 बच्चन ले सौलभ सेवा माँ।
1: छत्तीसगढ़ नेत्र चिकित्सालय, श्याम नगर गुरुद्वारा रोड, तेलीबांधा, रायपुर।
2: श्रोताओं, सूचनाओं की कड़ी में हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC द्वारा सूबेदार, उप निरीक्षक संवर्ग और प्लाटून कमांडर भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन 12 जुलाई को किया जाएगा। आयोग ने इस परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। ये परीक्षा रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थी आयोग की अधिकृत वेबसाइट पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचना बहुत जरूरी होगा। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण सूचना के बाद एक बार फिर चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

नमस्कार रायपुर, ये सूचनात्मक कार्यक्रम अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 8 बजने वाले हैं समाचार प्रभात, हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
3: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और अक्सर उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। बंदास गुप्ता, जकार्ता, इंडोनेशिया।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
4: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। नौवीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमरीका के एक अधिकारी ने बताया कि अमरीका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमरीका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों सिक्किम महाराष्ट्र तटीय कर्नाटक पूर्वी राजस्थान गुजरात कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश, आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
7: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering, and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups, and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Taken Force, FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early conclusion of Memorandum of Understanding on Counter-Terrorism Cooperation, which is expected to be signed soon. The two countries welcome the planned third India-Indonesia Security Dialogue as a platform to expand cooperation in counterterrorism, transnational crime, cybersecurity, emerging technologies, defense industry, maritime security, and space. Both leaders also agreed to explore greater cooperation in the cyber domain through policy dialogue, capacity building, and exchange of expertise and best practices. Shrandipan Dashgupta, Akashvani News, Jakarta.
6: Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address the Parliament of Indonesia. Addressing Indonesian lawmakers in Jakarta, Mr. Modi called for a new era in bilateral relations anchored in shared civilizational heritage, democratic values, and a common vision for the future. Describing India as a mother of democracy, the Prime Minister said New Delhi is committed to strengthening democratic linkages with Indonesia.
8: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं, तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं। भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है, तो इंडोनेशिया में भिन्ने का तुंगल इक्का का विचार है।
6: The Prime Minister noted that shared historical experiences, common developmental challenges, and the aspirations of the people have brought India and Indonesia closer as strategic partners. Highlighting India's development journey and the synergies between the vision of Viksit Bharat 2047 and Golden Indonesia 2045, Indonesia Emas 2045, PM Modi called for deeper collaboration in trade, investment, connectivity, food and energy security, digital public infrastructure and emerging technologies.
8: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
6: Prime Minister Modi will visit the iconic Prambanan Temple in Yogyakarta along with Indonesian President today. The visit underscores the deep cultural and civilizational ties that have connected India and Indonesia for over 1,000 years. Built in the 9th century, Prambanan is Indonesia's largest Hindu temple complex and one of Southeast Asia's finest architectural masterpieces. Originally comprising 240 large and small temples dedicated to Brahma, Vishnu and Shiva, the complex stands as a remarkable testament to the spread of Indian cultural influence across the region. Its magnificent stone reliefs depict scenes from the Ramayana, reflecting how Indian epics crossed the seas and became an integral part of Javanese culture. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit where he will participate in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum where he will address a gathering of top business leaders from both countries. He will also address a large gathering of the Indian diaspora and constitute a strong pillar of the India-Australia relationship. Our correspondent has filed this report.
9: The bilateral discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart, Anthony Albanese, are set to advance cooperation across several key domains. The economic engine of this relationship is accelerating at an unprecedented pace, with two-way trades in goods and services already crossing $33 billion US dollars in 2025. The ambition to reach $100 billion US dollars by 2030 is now a tangible objective. The India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement, providing duty-free access for all Indian exports since January 2026, has catalyzed massive capital flows. Beyond traditional trade, the partnership is now defined by digital-first investments, such as AirTrunk's $30 billion US dollars commitment to AI-ready data centers in India. Simultaneously, the $4.5 billion US dollars Project Ceres fertilizer plant exemplifies Make in India, Make in Australia synergy, with Indian industrial expertise providing the modular backbone for Australian production. Defense and security cooperation has rapidly evolved into a primary pillar of the partnership. Following the second defense ministers' dialogue in New Delhi on June 1st of 2026, the two nations continue to deepen industrial integration and maritime security. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne, Australia.
6: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Prime Minister's Office, PMO, held a high-level review meeting to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra, at the Seva Tirth yesterday. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Dr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of the monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states so that remedial action can be taken up when necessary. He emphasized that ensuring adequate availability of drinking water in vulnerable districts must be a top priority and directed optimal reservoir water utilization and judicious use of available water. We have more from a correspondent.
10: During the meeting, officials of the India Meteorological Department presented the overall rainfall situation in June and July. The Director General of the Met Department updated on the status of monsoon coverage in the country and the possible impact of El Nino. He informed that weak to moderate El Nino is expected in July and August. Secretary Agriculture made a detailed presentation on the preparedness for possible impact of El Nino during the Kharif season. He underlined that weekly meetings of Crop Weather Watch Group along with states are being convened to enable timely decision-making and contingency response. He noted that district agriculture contingency plans have been updated for 262 vulnerable districts and campaigns for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Kisan Credit Card coverage in vulnerable states have also been initiated. During the meeting, the Department of Animal Husbandry and Dairying was asked to assess the availability of dry fodder, green fodder and cattle feed at both macro and micro level. Department of Drinking Water and Sanitation informed that they are continuously monitoring and the situation as on date is stable. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
6: The Enforcement Directorate, ED, has conducted searches at five premises in and around Kolkata in connection with alleged dishonest financial dealings, unlawful collection of money and routing of suspected funds through certain bank accounts of the All India Trinamool Congress, AITC. The searches were carried out at the premises linked to the private firm Carewell Group of companies operating in the aviation sector, its directors and one purported electoral trust. According to the ED's preliminary investigation, more than 150 crore rupees were routed through aviation and travel companies for suspicious purposes. The US military has launched new strikes against Iran hours after three merchant ships were struck in the Strait of Hormuz. In a statement, U.S. Central Command said that American forces have launched strikes to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. Iran's Deputy Foreign Minister Kazem Gharibabadi said that the new attacks by the U.S. are a violation of the agreement. Moreover, United States has also revoked a license that had authorized the sale of Iranian oil as part of the interim deal to end the fighting between the two countries. On to sports and football. Argentina and Switzerland have stormed into the quarterfinals of the FIFA World Cup we have a report.
11: Switzerland defeated Colombia 4-3 in the penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. Colombia faltered when Davinson Sanchez smashed his spot kick against the bar and Cucho Hernandez had his effort saved by goalkeeper Gregor Kobel before Ruben Varga scored to book a quarterfinal date with holders Argentina. The two sides were tied after extra time with no goals. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. Argentina was trailing by two goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback with Cristiano Romero scoring the first goal at 79 minutes. The equalizer came through Messi in 83 minutes while Enzo Fernandez completed the turnaround with the winner in the extra time. Chirag Jha from Sports Desk.
6: In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 International at Trent Bridge in Nottingham last night, chasing a target of 202 runs set by England. India lost wickets in quick succession and were all out with a paltry score of 76 in 11.4 overs. For England, Josh Tung took four wickets, while Jofra Archer scalped three. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun.
3: Thank you, Abhishek. The wide-ranging talks in Jakarta between PM Modi and Indonesian President Prabowo Subianto is noticed prominently by the dailies Brahmos, Astra, EVMs in Focus as India-Indonesia Inc. 14 packs headlines the Tribune. The Indian Express in an editorial piece writes the end of football superpower dump. The paper elaborates, world football's beloved giant Brazil is sinking in a World Cup where tiny nations like Cape Verde and Curaçao showed that they even can compete and where Germany and Holland went home early while Italy were a no-show. And finally, Ernest Hemingway's novel The Sun Also Rises on Bull runs turn 100. Well, the Indian Express writes that Nobel laureates work places Spanish city Pamplona on the map for millions of people. And with that, it's back to you, Abhishek.
6: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
12: Medium wave aur FM band par Akashvani ka ye Raipur aur Saraipali kendra hai. सुबह की 8:30 बजे हैं। लीजिए सुनिए श्रोता पत्रों पर केंद्रित हमारा साप्ताहिक प्रसारण आपके पत्र।

0: आपके पत्र के सभी श्रोताओं को दीपक
1: और सीमा का नमस्कार।
0: सीमा जी, देखिए जिस बरसात का हमारे किसान भाइयों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था
1: जी।
0: उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और विगत दिनों हुई झमाझम बारिश से छत्तीसगढ़ और आसपास का इलाका पानी से तरबतर हुआ और इसी के साथ हमारे श्रोताओं के पत्र भी हमारे इस कार्यक्रम में रिमझिम फुहार की तरह पहुंच गए। तो बताइए, इस हफ्ते पहुंचे इन पत्रों में पहला पोस्टकार्ड आपके हाथों में किसका है?
1: ये पहला पोस्टकार्ड है दीपक जी, अमरपुर पेंड्रा से सुरुचि देवी और रोही श्रीवास्तव का। ये लिखते हैं, 15 जून को प्रसारित मोर भुइयां कार्यक्रम में समीर शुक्ला जी ने बातचीत की वरिष्ठ साहित्यकार सुरजीत नवदीप जी से। इन्होंने पढ़ाई से लेकर कविता में छत्तीसगढ़ी को महत्व दिया। छत्तीसगढ़ी बोली को महत्व देते हुए गीत भी सुनने को मिले। फिर माँ की महत्ता को भी गुरु बताते हुए हमें गीत सुनने को मिले। पवन दीवान जी के बारे में भी सुनने को मिला। बहुत पसंद आया हमको ये कार्यक्रम। पूरे आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत बधाई।
0: मोर भुइयां कार्यक्रम के इस अंक में वरिष्ठ साहित्यकार सुरजीत नवदीप जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनसे की गई इस बातचीत के माध्यम से गुजरे जमाने की बहुत सारी सुनहरी यादों को उन्होंने ताजा किया। साहित्य जगत की बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिनसे उनके रचना संसार को एक नया मुकाम हासिल हुआ। हमारे श्रोताओं को भी जानकर बहुत अच्छा लगा। इस पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये अगला पत्र है अहिवारा से डबल कुमार और जतिन धीवर का। ये लिखते हैं, 17 जून को भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना और तारकेश्वरी जी द्वारा प्रस्तुत नमस्कार रायपुर कार्यक्रम सुमधुर गीतों के साथ हमें बहुत अच्छा लगा, तो हृदय से बधाई। बेमेतरा से सुरेश और पूर्णिमा सारथी लिखते हैं, 19 जून को नमस्कार रायपुर को अधिक जानकारी बटोर कर लाए अंकुर शुक्ल, जिन्होंने साहित्यकार और समाज सेवी माधवराव सप्रे की जीवन गाथा को खूबसूरती से बताया। साथ ही सिकल सेल बीमारी के बारे में हमें जागरूक किया। डॉक्टर विकास गोयल द्वारा आपकी सरल भाषा में ये जानकारी प्रेरणादायक लगी। खैरागढ़ से देवेंद्र महोबे लिखते हैं, 20 जून को अनुभा जी द्वारा नमस्कार रायपुर कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, जिसमें योग सहित कई सूचनाएं और वार्ता थी। आपके द्वारा चित्रपट और सदाबहार नगमे प्रस्तुत किया गया, जिसमें अनेक पुराने गीत भी थे। ये कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत बधाई।
0: सीमा जी, अलग अलग दिनों में प्रसारित नमस्कार रायपुर कार्यक्रम में हमारे सभी प्रस्तुतकर्ता उद्घोषकों ने विविध तरह की जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई और ये सभी जानकारियां जनोपयोगी होती हैं, जन कल्याणकारी होती हैं और इसके अलावा इसके साथ प्रसारित किए गए गीत भी बड़े मधुर होते हैं और हमारे श्रोताओं की हर सुबह नमस्कार रायपुर कार्यक्रम सुनने के बाद तरोताजा और नवीनता के साथ साथ उमंग से परिपूर्ण हो जाती है। तो उमंगों की ये सुबह हर रोज आपके जीवन में आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से यूं ही आती रहेगी। पत्रों के लिए धन्यवाद।
1: सिमगा से लवकुश और प्रहलाद सेन लिखते हैं, 22 जून को प्रसारित पल्लवी में जन कल्याण में लोक नाट्य का महत्व, इस विषय पर वार्ता हम श्रोताओं को बहुत ही लाभप्रद और उपयोगी लगी। शक्ति और शौर्य और साहस से हर श्रोता दर्शक लोक नाट्य में मानवता की सेवा पर बड़े बड़े थिएटरों में अपनी अभिनय शैली से प्रेम वात्सल्य और करुणा की झरना से जब कार्यक्रम प्रस्तुत कर हम श्रोताओं एवं दर्शकों के दिल को जोड़ता है, तो मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सौहार्द बढ़ जाता है। साथ ही इसी दिन सुशील यादव की कविता, अभी तो हमारे ख्वाब हमारी सांस चल रही है मगर हवा कहीं नहीं दिल में, बेहद ही कर्णप्रिय लगी। प्रेरणा और अविनाश की पुरानी स्मृति पर आधारित कहानी वटवृक्ष में कहानीकार आशा झा ने हर इंसान को वटवृक्ष की तरह होना चाहिए ये बात कही और साथ ही धीरज रखने की बात कही। सफल संपादक प्रकाश उदय जी बधाई के पात्र हैं।
0: पल्लवी के इस अंक को आपने गौर से सुना और इस अंक में प्रसारित कहानी और कविता ने आपके हृदय को स्पर्श किया, यह हमारे प्रसारण की सार्थकता है। तो साहित्य की विधाओं से जुड़े रचनाकारों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर उनके विचारों को उनकी भावनाओं को कहानी और कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाना हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य है, जो इस पत्र से हमें सफल होता हुआ प्रतीत हो रहा है। पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: भाटापारा से अब्दुल मजीद कुरैशी और रेहाना बेगम लिखते हैं, 24 जून को आपके पत्र कार्यक्रम में इस माह के श्रोता के तहत ग्राम सीस देवरी पलारी के श्रोता रविशंकर चंद्राकर के साथ दीपक हटवार जी की जो बातचीत सुनाई गई वो हमें बेहद पसंद आई। चंद्राकर जी ने अपने बारे में भी जो बातें बतलाई उसे भी सुनकर बहुत अच्छा लगा। चंद्राकर जी के साथ इतनी अच्छी बात करने पर दीपक जी को बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में पत्र है भाटापारा से ही चोवाराम और हरीश वर्मा का।
0: हमारे इस मास के श्रोता से की गई इस बातचीत के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को इस बात का आभास हुआ सीमा जी कि जितने भी श्रोताओं से हम संपर्क कर रहे हैं वे आकाशवाणी रायपुर के बहुत ही पुराने और गहराई से जुड़े हुए श्रोता हैं और हमारे कार्यक्रमों को बहुत गौर से सुनते हैं। आने वाले दिनों में हमारे अन्य सम्मान्य श्रोताओं से भी हम संपर्क अवश्य करेंगे। कार्यक्रम आप यूं ही सुनते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शिक्षक नगर दुर्ग से राकेश और सचिन वर्मा लिखते हैं, 29 जून संत कबीर के प्राकट्य दिवस पर प्रवीणा त्रिपाठी जी द्वारा संत कबीर के जीवन दर्शन और सामाजिक संदेशों पर प्रकाश डाला गया, धन्यवाद। सचमुच संत कबीर के सत्य प्रेम मानवता और समरसता सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर आपसी प्रेम और भाईचारे को आत्मसात करने का वर्तमान समय में बेहद महत्व है, हार्दिक बधाई।
0: संत कबीर दास जी का यह संदेश शांति प्रेम सद्भावना और मानवता के लिए आज भी प्रासंगिक है सीमा जी। आकाशवाणी के माध्यम से ऐसे ही संदेश जन जन तक हम यूं ही पहुंचाते रहेंगे। पत्र के लिए धन्यवाद।
1: 24 जून को ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी की सुनो, लेकर आए शशांक खरे। 26 जून को सुर सिंगार कार्यक्रम प्रस्तुत किया तारकेश्वरी ने।

0: 28 जून को आपके बीच ये गीत प्रस्तुत किया शुभ्रा ठाकुर ने। 28 जून को आप मन के गीत लेकर आई भावना शर्मा। इन सभी कार्यक्रमों की तारीफ में हमें ये पत्र मिले हैं। भिलाई 3 से नौशाद अहमद सिद्दीकी का, दतरंगी से विश्राम यदु पार्वती यदु, सिर्री गातापार से धनेश्वरी और ओम प्रकाश साहू, कोरदा लवन से भूधर प्रसाद और गुलशन कुमार वर्मा का।
1: शिवाजी, हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों के चाहने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है और ये तादाद अब ईमेल की तरफ चली गई है, लेकिन हमारे कुछ श्रोता अभी भी ऐसे हैं जो हमें पोस्टकार्ड भेजते हैं, तो उनका भी पूरा स्वागत और सम्मान करते हुए इन पत्रों के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। और आज के सारे ही पोस्टकार्ड आपने पढ़ लिए
0: जी,
1: अब आपके हाथ में मुझे ये ईमेल दिखाई दे रहा है, तो बताइए ये पहला ईमेल किसका है?
0: ये पहला ईमेल है सिंगारबाड़ी घुटकू से भगत राम पटेल और मानवी पटेल का। ये लिखते हैं, नशे का सेवन करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। 29 जून को दहलीज के अंतर्गत विजय लक्ष्मी तिवारी से दीपक खटवार की ली गई भेंट वार्ता सुनने को मिली। विषय था किशोर बच्चों को नशे से कैसे बचाएं, जो कि बेहद ही रोचक और ज्ञानवर्धक लगी। सफल प्रसारण के लिए आकाशवाणी रायपुर को सहृदय बधाई।
1: इस प्रसारण का उद्देश्य यही था सीमा जी, कि हमारे आसपास जितने भी किशोर वय या युवा वर्ग या फिर किसी भी उम्र के कोई भी व्यक्ति हो, अगर वे किसी भी तरह का नशा करते हैं तो उससे स्वयं को दूर करने का प्रयास करें और सदा के लिए नशे का त्याग वे कर दें, तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रयास पूरी तरह से सफल हुआ। बहरहाल, इस कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, पत्र के लिए धन्यवाद।
0: बघेरा दुर्ग से बीएल वैष्णव लिखते हैं, 30 जून को मोहन अग्रहरी जी का चिंतन बहुत ही प्रेरणादायक लगा। आज विदेशी सभ्यता को अपनाते जा रहे हम और अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कार को हम भूलते जा रहे हैं। ये एक कटु सत्य है पर दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की प्राचीन परंपरा हमें संस्कार के उद्देश्य के लिए लोक ही नहीं बल्कि मनुष्य के परलौकिक जीवन को भी पवित्र कर सफल बनाती है। अच्छे संस्कार, ईमानदारी, विनम्रता, परोपकार जैसे गुण हमारे जीवन में पैदा करते हैं, जो कि व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इतने अच्छे चिंतन के लिए मोहन अग्रहरी जी को बहुत बहुत साधुवाद।
1: 5 मिनट का ये चिंतन गागर में सागर की तरह है, जिसे आप सुनकर अच्छे विचारों को ग्रहण करें और इन विचारों को औरों तक भी अपनी वाणी के माध्यम से पहुंचाते रहें, यही हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये अगला ईमेल है खैरागढ़ राज लालपुर से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे का। ये लिखते हैं, 30 जून को आपके केंद्र से प्रसारित मोर भुइयां कार्यक्रम में एक गोड बात सुनने को मिली, जिसका विषय था 25 बछर के छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया भाखा। संचालन कर रहे थे डॉक्टर राजन यादव जी और प्रतिभागी थे श्रीमती सल्ला शर्मा, डॉक्टर बी रघु कुमार जी। सभी प्रतिभागियों के विचार उद्देश्यपूर्ण, सारगर्भित और सराहनीय रहे। इस गुट बात के माध्यम से हमें यही जानकारी सुनने को मिली कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य कई चुनौतियों और नक्सलवाद से लड़ते हुए बीते 25 वर्षों में जल, जंगल, जमीन और जनसाधारण के समन्वय के साथ देश के अग्रणी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होने को अग्रसर है। और इन वर्षों में ही छत्तीसगढ़ की मुख्य और राजभाषा छत्तीसगढ़ी केवल संवाद का साधन मात्र ही नहीं रही है, बल्कि राज्य की समृद्ध संस्कृति, लोक कला और ऐतिहासिक पहचान का आधार भी बनी है। इस नई पहल से नई पीढ़ी भी अपनी मातृभाषा से मजबूती से जुड़ रही है। ये गोट बात हमारे लिए बेहद ज्ञानवर्धक और उपयोगी रही। एक सार्थक गोट बात के लिए समस्त प्रतिभागियों सहित संपादक महेंद्र साहू जी और आकाशवाणी रायपुर को हमारी कोटिशा बधाई।
1: मोर भुइयां कार्यक्रम के इस अंक में हमारी धरती और हमारी भाषा के प्रति जिस अनुराग को व्यक्त किया गया था सीमा जी, ये वही अनुराग, वही समर्पण है और अपनी माटी की सौंधी खुशबू है, जो हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम कहीं भी रहें, अपने प्रदेश के विकास के लिए सदैव समर्पित रहें और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी परंपरा के मूल्यों को बचाए रखने के लिए संकल्पित रहें। यही संदेश इस कार्यक्रम में प्रसारित चर्चा के माध्यम से जन जन को दिया गया, जिसे आपने सुना। पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ये अगला ईमेल है धमतरी से रामचंद माखीजा और सविता माखीजा का। ये लिखते हैं, 1 जुलाई को गांधी चर्चा में महात्मा गांधी जी के विचार मेले समकालीन का धारावाहिक पाठ में लोकमान्य तिलक जी के बारे में हमने सुना। वाचन रमाशंकर और प्रकाश उदय के थे। तिलक जी और गांधी जी के विचार बहुत ही प्रेरक लगे। धन्यवाद।
1: गांधी चर्चा का प्रसारण हर सप्ताह होता है और इसमें महात्मा गांधी जी के समकालीन विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया जाता है, जिसे सुनकर आज भी हमें उनके उन विचारों के बारे में पता चलता है जो प्रासंगिक हैं और सदैव रहेंगे। तो गांधी जी के समकालीन घटित विभिन्न घटनाएं हमें सदैव सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए आपको।
0: धरसीवा से छेदूलाल यादव और सीता यादव लिखते हैं, 2 जुलाई को सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार रायपुर प्रस्तुत किया तारकेश्वरी आसुदानी जी ने। ये कार्यक्रम सूचनाओं से भरा हुआ था। नौकरी लगाने, ठग से सावधान रहने या अन्य जानकारी जो इसमें दी गई बहुत ही उपयोगी रहती है। एक बहुत अच्छी जानकारी अर्थिंग के संबंध में थी। प्रायः हर घर में विद्युत उपकरणों का प्रयोग हो रहा है जिसमें अर्थिंग नहीं होने से बहुत सा नुकसान हमें उठाना पड़ सकता है। इसलिए अर्थिंग घर में लगा है और वो कार्य कर रहा है कि नहीं, इस बात का जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में ध्यान रखने की जानकारी हमें बहुत अच्छी लगी। प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
1: सीमा जी, इन्होंने अर्थिंग की बात कही है तो इन दिनों बरसात के मौसम में विद्युत उपकरण हो या विद्युत के तार हो, हमें बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए क्योंकि करेंट लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो हम नमस्कार रायपुर कार्यक्रम के माध्यम से सावधानी की जानकारी भी हमारे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। इस पत्र के लिए आपको धन्यवाद।
0: करी भदर से पुरुषोत्तम निर्मलकर और श्रद्धा निर्मलकर लिखते हैं, 2 जुलाई को हमने कार्यक्रम लोक संगीत सुना जिसके कलाकार थे गंगाबाई गेदाम और उनके साथी। ये कार्यक्रम मन को छू लिया। कलाकारों को दिल से धन्यवाद।
1: लोक संगीत के कार्यक्रम में आकाशवाणी के संग्रहालय में रखी हुई पुरानी रिकॉर्डिंग हमारे श्रोताओं को हम जब भी सुनवाते हैं सीमा जी, उनका मन आनंदित हो जाता है क्योंकि पुराने संगीत की बात ही कुछ और है। बहरहाल, इस पत्र के लिए आपको धन्यवाद।
0: कन्नेवाड़ा से देवेंद्र कुमार सोनवानी और लक्ष्मीना सोनवाली लिखते हैं, 1 पेड़ माँ के नाम। पेड़ लगाना ही पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रभावी और सरल अभियान है। 1 पेड़ माँ के नाम एक सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल पहल है जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुरू किया था। इसका उद्देश्य अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जताने के लिए उसकी याद में एक पेड़ लगाना है। ये छोटा कदम हमारी धरती को हरा भरा बनाता है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से लड़ता है। आप अपने राज्य, जिले, शहर और गांव में भी इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। पेड़ लगाने के बाद आप अपनी माँ के साथ उनकी फोटो भी इस अभियान में शो कर सकते हैं। 3 जुलाई को कार्यक्रम नवा बिहान लेकर आए वीरभान साहू जी। साहू जी ने इस अभियान पर कुछ प्रकाश डाला, फिर पर्यावरणविद, पर्यावरण प्रेमी राम नारायण यादव जी से मुखातिब हुए और फिर चर्चा शुरू हुई जिसमें आप दोनों ने पर्यावरण का संदेश दिया। पर्यावरण का संदेश हमें बहुत ही प्रेरक लगा और इसके लिए आप दोनों को दिल से धन्यवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ में लिखा है रायपुर से भारती और वरुण राठौर ने।
1: 1 पेड़ माँ के नाम, ये संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया गया सीमा जी। और अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में अगर हम एक नहीं बल्कि अनेक पौधे भी लगाते हैं तो हमारे पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ हम अपने आसपास की हरियाली को भी बढ़ाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रेरक संदेश आप तक पहुंचा, जानकर हमें खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद इन पत्रों के लिए आपको।
0: हीरा साहू रायपुर से ये लिखते हैं, 3 जुलाई को सुबह कार्यक्रम इनसे मिलिए में सुप्रसिद्ध अभिनेता श्री रघुवीर यादव से सुप्रिया जी की रोमांचक बातचीत सुनने को मिली। प्रतिभागियों के साथ आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये मेल है पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू और सुजाता साहू का।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम में इस बार सुप्रसिद्ध अभिनेता रघुवीर यादव जी से सुप्रिया भारतीयन जी ने जो बातचीत की थी सीमा जी, उसकी रिकॉर्डिंग हमने प्रसारित की। हमारे बहुत सारे श्रोताओं को ये पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद इन पत्रों के लिए आपको।
0: घटारानी अंचल फुलझर से योगेश्वर साहू और डोमेश्वरी साहू लिखते हैं, 3 जुलाई की सुबह चाय की चुस्की के साथ खेतों में काम करते हुए नमस्कार रायपुर कार्यक्रम सुना। कार्यक्रम में सुमधुर फिल्म संगीत के साथ सूचनाएं प्रदान की गई और हमको ये जानकारी सुनने को मिली। कार्यक्रम ने हमारा दिल जीत लिया। खेतों में काम करते हुए मोबाइल एप्लीकेशन से रेडियो सुना और समय का पता ही नहीं चला और काम जल्दी से पूरा हो गया। उत्कृष्ट और

0: भी प्रस्तुति के लिए संजय पाठक जी को बहुत बहुत बधाई।
1: नमस्कार, रायपुर कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं की सुबह की शुरुआत हो जाती है और आजकल रेडियो की जगह मोबाइल के माध्यम से हमारे श्रोता हमारा प्रसारण बहुत ही स्पष्ट क्वालिटी में सुन रहे हैं।

0: प्रस्तुतकर्ता श्रेया श्रीवास्तव के साथ साथ आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई।
1: आपकी बधाई हम हमारे उन सभी प्रस्तुतकर्ता उद्घोषकों तक पहुंचा रहे हैं जो प्रतिदिन नमस्कार रायपुर के माध्यम से आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आते हैं। धन्यवाद।
0: तेंदुवाटा मगर लोड से उमेंद कुमार निषाद और देविका निषाद लिखते हैं, 4 जुलाई को बातों बातों में कार्यक्रम में मौसम संबंधी जानकारी और अल्प वर्षा में कौन कौन सी फसल हमें लेना चाहिए इस संबंध में मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर गोपी कृष्ण दास जी से बड़े विस्तार से हमें जानकारी मिली और इनसे बातचीत की विकल्प रंजन शुक्ल ने। ये बातचीत हमें बड़ी अच्छी लगी, हृदय से धन्यवाद।
1: देखिए, मौसम का हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और मौसम की सटीक जानकारी हमारे किसान भाइयों को देने का भी हम प्रयास करते हैं विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से। इस कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आर्यनगर गोका भिलाई से उत्तम जंगेल और मोरस जंगेल लिखते हैं, 4 तारीख के मछनिया गाथा अक्षरों के सीमा लोरिक चंदा के किस्सा सुने बर मिलीस, जिमा लेखक परदेसी राम वर्मा, प्रस्तुतकर्ता मोहन सी रामानी और वाचन स्वर प्रीति राज्यवैद और योगेश नैयर के रिहिस। ये कार्यक्रम हमला बहुत बढ़िया लगेस, बढ़िया प्रस्तुति पर जम्मो पात्र मनला बहुत अकन बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये ईमेल है बिनौरी फिंगेश्वर से टीकम राम और योगेश्वर साहू का।
1: छत्तीसगढ़ी संगीत का खजाना विभिन्न लोक गाथाओं से भरा हुआ है और गाथा झरोखे से इस श्रृंखला के माध्यम से ये गाथाएं हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि ये इसका पुनः प्रसारण है लेकिन आप इसका भरपूर आनंद उठा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा लिखते हैं, 4 जुलाई को डॉक्टर की सलाह में डॉक्टर विनय राठौर किडनी रोग विशेषज्ञ से बच्चों से लेकर सभी उम्र के मनुष्यों में होने वाले किडनी रोग कारण लक्षण और उपचार खान पान रहन सहन पर रमाशंकर जी द्वारा ली गई भेंटवार्ता हमें सुनने को मिली। सफल प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ईमेल है अड़ार नांदघाट से माखन और चांदनी वर्मा का।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम के प्रसारण का यही उद्देश्य है सीमा जी, कि इसके हर अंक में दी गई जानकारी को हमारे श्रोता ध्यान से सुने और अपने स्वास्थ्य का वो पूरी तरह से ध्यान रखें ताकि हम सभी सदैव स्वस्थ रहें। पत्रों के लिए धन्यवाद।
0: तेंदुवाटा मगर लोड से पोषण कुमार निषाद शिवा निषाद लिखते हैं, 5 जुलाई को पंडवानी गायिका और देश विदेश में छत्तीसगढ़ी के नाम रोशन करने वाली विदुषी तीजन बाई का स्वर्गवास हो गया और इसी दिन शाम के समय श्रद्धांजलि सभा हुई जिसमें विभिन्न लोगों के विचार सुने गए। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश उदय जी ने किया। तीजन बाई को हमारी तरफ से भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसी प्रसारण की समीक्षा में ये मेल है धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित और शकुन जंगेल का, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक और के आर साहू का।
1: सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका विदुषी तीजन बाई जी, जिन्होंने पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लोक कला का नाम देश और दुनिया में रोशन किया, वे आज हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी पंडवानी गाथा गायन की बहुत सारी रिकॉर्डिंग आकाशवाणी रायपुर में हमने बहुत संभाल कर रखी है और इन्हें हम समय समय पर प्रसारित करते रहेंगे और हमारे श्रोता उन्हें याद करते रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने हमारे सभी श्रोताओं की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को आपने गौर से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह और अनुभव से लिखते हैं, 5 जुलाई को कानून की बात के तहत किशोर न्याय अधिनियम महिला संबंधित अपराध इस विषय पर काफी महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी सुनने को मिली जो कि आकाशवाणी बिलासपुर की प्रस्तुति थी। इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: कानून की बात कार्यक्रम हमारे श्रोता हर हफ्ते सुनते हैं और भारतीय संविधान से संबंधित अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। पत्र के लिए आपको धन्यवाद।
0: बिरनपुर खुर्द गंडई से अजीत जंगेल और मनीष जंगेल लिखते हैं, 6 तारीख के लोक संगीत माँ द्वारिका यादव और सरस्वती निषाद के गाये गीत सुने बर मिलिस, गीत छत्तीसगढ़ी ग्रामीण संस्कृति ले जुड़े रहीस, जम्मो गीत बहुत बढ़िया लगी समला, बने बने प्रस्तुति पर आकाशवाणी ला साधुवाद।
1: प्रतिदिन अलग अलग समय पर लोक संगीत का प्रसारण होता है जिसे हमारे श्रोता बहुत गौर से सुनते हैं। यूं ही हमारे प्रसारणों से आप जुड़े रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वैभव जैन और चिराग जैन रायपुर से लिखते हैं, रंग तरंग में हास्य नाटिका बोर मत करो, लेखक उमेश कुमार सोनी, प्रस्तुति समीर शुक्ल की थी और भाग लेने वाले कलाकार थे के परेश, सुमिता राय बर्मन, मधु साहू और दीपक।

0: अठवार, मिलते जुलते शब्दों की गलत फहमी माहौल को हास्य की चाशनी से सराबोर कर देती है। इस हास्य को जीवित करने के लिए पूरी टीम को साधुवाद।
1: आकाशवाणी रायपुर में इस तरह की झलकियों का निर्माण बहुत बड़ी संख्या में किया गया है सीमा जी, और समय समय पर इन कार्यक्रमों का पुनः प्रसारण भी हम करते हैं, जिन्हें हमारे श्रोता बहुत गौर से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ग्राम नेवई उतई से विक्की देवांगन और उर्वशी देवांगन लिखते हैं, फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, श्रोताओं से बहुत अच्छी बातचीत की गई और उनकी पसंद के गीत भी हमें सुनने को मिले। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए प्रीति यादव के संग वीरभान साहू जी को हार्दिक बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये ईमेल है, चतुर्भुज सिरकट्टी आश्रम से झामेश्वरी और टीकम साहू का। मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू और योगेश साहू लिखते हैं, 30 जून को प्रसारित आप मन के गीत कार्यक्रम की प्रस्तुति हमें बहुत मनभावन लगी। बहरहाल इस सफल प्रस्तुति के लिए संजय पाठक और आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई। लोरमी ग्राम चचेरी से कमलकांत मरावी और प्रमिला मरावी लिखते हैं, 1 जुलाई को ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो कार्यक्रम मा हमर मायारुख। शशांक खरे जी श्रोता संगवारी मन ले भेजे गए ईमेल और नाम ला शामिल करके बहुत सुग्गर सुग्गर गीत हमला सुनाई। मनमोहक प्रस्तुति भर आकाशवाणी परिवार ला बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम के तारीफ में ईमेल है, पिपरिया से कमलकांत दीपा रिमझिम गुप्ता का, रायपुर से रानू साहू खुशी साहू, गंडई टिकरी पारा से दीपक कुमार जयश्री देवांगन, सालेबाटा महासमुंद से जीतू ध्रुव केवल ध्रुव, भीमकूच तरपोंगी से संतोष देवकी गुप्ता, आवरा डबरी से श्यामलाल और मोगरा साहू, भाटापारा से बचकामल, मेघापारा लोरमी से रामकुशल और संतोष पटेल का। कुई ग्राम भंगी टोला से ननकाराम धुर्वे और जामुनबाई धुर्वे लिखते हैं, 2 जुलाई को ईमेल भेजे फिल्म संगीत सुने। इस कार्यक्रम में श्रोताओं के द्वारा भेजे गए ईमेल और अधिक से अधिक नाम को शामिल करके हमारी पसंद के बेहतरीन गाने हमें सुनाए गए। इसकी लाजवाब प्रस्तुति के लिए तारकेश्वरी और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कार्यक्रम की तारीफ में ये ईमेल है, गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास और मिलाऊ दास मानिकपुरी का। चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू और अजय कुमार साहू लिखते हैं, 4 जुलाई को आपके मीत ये गीत कार्यक्रम सुनने को मिला। अर्पिता जी ने बहुत अच्छे अच्छे गीतों का चयन किया था और काफी संख्या में पत्र और मेल को भी शामिल किया था और हम श्रोताओं का बहुत ही मनोरंजन किया। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में कुछ और ईमेल प्राप्त हुए हैं, भड़गा कोदवा गोडान से श्याम सिंह और राजकुमारी मरावी, नेवई उतई से विक्की और उर्वशी देवांगन और सहिया मालगी से सुखनंदन और शिवरानी चंद्रवंशी का। लोरमी ग्राम करुहानार से गोमती रजक और काजल रजक लिखते हैं, 5 जुलाई के छत्तीसगढ़ी फरमाइश आप मन के गीत कार्यक्रम में भेजे गए ईमेल पाती औ नाम शामिल कर बहुत सुघर गीत हमला सुने बर मिलिस, जेकर मनमोहक प्रस्तुति बर पिंकी दुलानी और आकाशवाणी परिवार ला हमार कोरी कोरी बधाई। ग्राम कन्या जिला बालाघाट से अखिलेश कुमार यादव और ज्योति यादव लिखते हैं, 5 जुलाई को हमारे मनपसंद कार्यक्रम में फोन इन फरमाइश कार्यक्रम हमें सुनने को मिला, जिसमें सभी श्रोता साथियों की पसंद लाजवाब थी और उनके विचार और उनके गाँव और मौसम की जानकारी हमें सुनने को मिली और ये जानकारी हमें बहुत अच्छी लगी। इसी दिन की सफल प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी को और कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी श्रोता साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हस्ता नंबर 2 से कमलेश कुमार साहू जितेंद्र साहू लिखते हैं, 6 जुलाई को हमारा पसंदीदा कार्यक्रम फोन करो छत्तीसगढ़ी गीत सुनो सुनने को मिला, जिसे प्रस्तुत किया प्रवीणा त्रिपाठी ने। श्रोताओं से बातचीत और श्रोताओं के पसंद के गीत सुनाए गए जो हमें बहुत अच्छे लगे। शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत बधाई। इसी कार्यक्रम की तारीफ में कुछ और ईमेल प्राप्त हुए हैं, गेंदा टोला बाजार चौक से बीरेंद्र कुमार और गजेंद्र गुप्ता, टेकापार बालोस से चिंताराम और रवि प्रकाश यादव का।
1: तो सीमा जी, हमारे फरमाइशी कार्यक्रमों के प्रति हमारे इतने सारे श्रोताओं की पसंद, उनका लगाव और उनका जो स्नेह है वो हमें यही बताता है कि आकाशवाणी रायपुर के फरमाइशी कार्यक्रमों को खूबसूरत बनाने में जो भूमिका मधुर मधुर गीतों की होती है, वही भूमिका हमारे इतने सारे श्रोताओं के नामों की होती है। तो यूं ही आपके नामों से हमारे फरमाइशी कार्यक्रम सजते रहेंगे। इन सभी पत्रों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और अब घड़ी का इशारा है कि ईमेल आईडी बताई जाए। तो ईमेल आईडी नोट करें RAIAPKEPATRA1@gmail.com। पोस्ट कार्ड भेजने के लिए पता है कार्यक्रम आपके पत्र, द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड 492001। तो अगले हफ्ते आपके पत्रों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अनुमति दीजिए दीपक
0: और सीमा शर्मा को नमस्कार।

आपके पत्र श्रोता पत्रों पर केंद्रित हमारा यह साप्ताहिक प्रसारण अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में आज सुनिए महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ।

0: श्रोताओं, गांधी चर्चा में लीजिए सुनिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों का अगला भाग।
1: लोगों ने तिलक महाराज को जो पदवी, जो उच्च स्थान दिया था, वह राजाओं के दिए खिताबों से लाख गुना कीमती था। देश ने आज ये बात सिद्ध कर दिखाई है। यह कहें तो अत्युक्ति नहीं होगी कि सारी बंबई लोकमान्य को पहुंचाने के लिए उलट पड़ी थी। उनके आखिरी दिनों में जो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा, वह कभी भुलाया नहीं जा सकता। लोगों के उस अगाध प्रेम का वर्णन करना असंभव है। फ्रांस में कहावत है कि राजा मर गए, राजा चिरंजीवी रहे। ये विचार इंग्लैंड आदि सारे देशों में प्रचलित है। जब राजा की मृत्यु होती है, तब ये कहावत कही जाती है। उसका भावार्थ यह है कि राजा तो मरता ही नहीं, राजतंत्र एक मिनट भी बंद नहीं रहता। उसी प्रकार तिलक महाराज भी मर नहीं सकते, न मरे ही। बंबई की जनता ने यह दिखला दिया कि वह जीते हैं और बहुत समय तक जिएंगे। उनके सगे संबंधियों को भले ही दुख हुआ हो, उन्होंने भले ही आंखों से मोती टपकाए हों, परंतु दूसरे लोग तो उत्सव मनाने के लिए ही आए थे। बाजे और भजन लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि लोकमान्य मरे नहीं हैं। लोकमान्य तिलक महाराज की जय ध्वनि से आकाश गूंज उठता था। उस समय लोग इस बात को भूल गए थे कि हम तो तिलक महाराज के देह के दाह कर्म के लिए आए हैं। शनिवार की रात को जब मैंने उनके स्वर्गवास की खबर सुनी, तब मेरा चित्त व्याकुल हो रहा था, पर जयघोष सुनकर मेरी बेचैनी जाती रही। मेरी भी यही धारणा हुई कि तिलक महाराज जीवित हैं। उनका क्षणभंगुर देह छूट गया है, पर उनकी अमर आत्मा तो लाखों लोगों के हृदय में विराजमान है। इस जमाने में किसी भी लोकनायक को ऐसी मृत्यु का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। दादा भाई गए, फिरोज शाह गए, गोखले भी चले गए, सबके साथ हजारों लोग शमशान तक गए थे, पर तिलक महाराज ने तो हद कर दी। उनके पीछे तो सारी दुनिया गई। रविवार को बंबई बावली हो गई थी। ये कैसा चमत्कार! संसार में चमत्कार नाम की कोई वस्तु ही नहीं, अथवा यों कहें कि जगत स्वयं ही एक चमत्कृति है। बिना कारण के कोई काम नहीं होता, इस सिद्धांत में कोई अपवाद नहीं हो सकता। लोकमान्य का हिंदुस्तान पर असीम प्रेम था, इसी कारण लोक प्रेम की मर्यादा नहीं रह गई थी। स्वराज्य के मंत्र का जितना जाप उन्होंने किया है, उतना दूसरे किसी ने नहीं किया। जिस समय दूसरे लोग ये मानते थे कि हाँ, अब भारत स्वराज्य के योग्य होगा, उस समय लोकमान्य सच्चे दिल से मानते थे कि भारत आज ही तैयार है। लोकमान्य की इस धारणा ने लोगों के मन को हर लिया था। ऐसा मानकर वह बैठे नहीं रहे, बल्कि जिंदगी भर उसके अनुसार काम किया। उससे जनता में नवीन चैतन्य, नया जोश पैदा हुआ।

उन्होंने स्वराज्य प्राप्त करने की अपनी अधीरता का स्वाद लोगों को चखाया और ज्यों ज्यों जनता को उसका स्वाद मालूम होने लगा त्यों त्यों वह उनकी तरफ खींचती गई। उन पर अनेक तरह की आफतें आई, तरह तरह के कष्ट उन्हें सहने पड़े, तो भी उन्होंने इस मंत्र का अनुष्ठान नहीं छोड़ा। इस तरह वह कठिन परीक्षाओं में भी पास हुए। इससे जनता ने उन्हें अपने हृदय का सम्राट बनाया और उनका वचन उनके लिए कानून की तरह मान्य हो गया। देह के नष्ट हो जाने से ऐसा महान जीवन नष्ट नहीं होता, बल्कि देहपात के बाद से ही तो वह शुरू होता है। जिसे हम पूजनीय मानते हैं, उसकी सच्ची पूजा तो उसके सद्गुणों का अनुकरण करना ही है। लोकमान्य अत्यंत सादगी के साथ रहते थे। उनके स्मरण के लिए हमें भी अपना जीवन सादा बनाना चाहिए। हमें उस सीमा तक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए जिस तरह के लिए हमारा मन गवाही देता हो। अपने निश्चित कार्य को करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। वे विचारशील थे, हमें भी विचार करके ही बोलना और काम करना चाहिए। वे विद्वान थे, अपनी मातृभाषा और संस्कृत पर उनका खूब प्रभुत्व था, हमें भी उनकी तरह विद्वान होने का निश्चय करना चाहिए। व्यवहार में विदेशी भाषा का त्याग करके मातृभाषा का काफी ज्ञान प्राप्त करना और उसी के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने का अभ्यास करना चाहिए। हमें संस्कृत भाषा का अध्ययन करके अपने धर्म ग्रंथों में छिपे धर्म रहस्यों को प्रकट करना चाहिए। वे स्वदेशी के प्रेमी थे, हमें भी स्वदेशी का अर्थ समझकर उसका व्यवहार करना चाहिए। उनके हृदय में अपने देश के प्रति अथाह प्रेम था। हम भी अपने हृदय में ऐसा प्रेम उदय करें और दिन प्रतिदिन देश सेवा में अधिकाधिक तत्पर हों। इसी रीति से उनकी पूजा हो सकती है। जिससे इतना ना हो सके, वह उनकी यादगार के लिए जितना हो सके धन दें और वह स्वराज्य के कार्य में खर्च किया जाए। लोकमान्य वर्तमान राज्य मंडल के कट्टर शत्रु थे, पर इससे ये न समझना चाहिए कि वे अंग्रेजों से द्वेष करते थे। जो लोग ऐसा समझते हैं वे भूल करते हैं। उन्हीं के श्रीमुख से मैंने कई बार अंग्रेजों की प्रशंसा सुनी है। वे अंग्रेजी राज्य के संबंध को भी अनिष्ट नहीं मानते थे। वे तो सिर्फ अपने को अंग्रेजों के बराबर मनवाना चाहते थे। किसी का गुलाम बनकर रहना उन्हें पसंद न था। ऐसे प्रौढ़ देशभक्त के स्वर्गवास का उत्सव हम मना रहे हैं। ऐसे पुरुष का देह चाहे रहे या न रहे, पर देश की सेवा तो किया ही करता है, देश को आगे बढ़ाया ही करता है। जिसने अपने कार्य की रूपरेखा बना रखी हो, जिसने उनके अनुसार 45 वर्षों तक काम किया हो, जिसने अपनी देह को देश सेवा के ही अर्पण कर दिया हो, उसके देह का नाश भले ही हो जाए, पर उसकी स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। अतएव लोकमान्य तिलक मरकर भी हमें जीवन का मंत्र सिखा गए हैं।

श्रोताओं, इन दिनों आप सुन रहे हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में गांधी जी के विचारों की लंबी श्रृंखला। ये विचार श्रृंखला आगामी अंकों में भी जारी रहेगी।

गांधी चर्चा इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमा शंकर के थे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत।

नदीम शवन की बनाई तर्ज पर ईथा समीर का लिखा गीत। फिल्म बरसात के लिए स्वर दिया था कुमार सानू और अलका याज्ञिक ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना। सोमवार 13 जुलाई को प्रसारित होने वाले हेलो युवाणी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज बुधवार को सुबह 11 बजे से 11:30 तक की जाएगी। हमारा फोन नंबर है 400-3483-400-3483-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484 तो फोन करिएगा आज सुबह 11 बजे।

0: किशोर कुमार और उषा मंगेशकर को भी आपने सुना। शब्दरचना एमजी हशमत की थी और धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम था दो झूठ। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
2: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
3: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए।
1: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं। कभी कोई किस्सा याद आता है।
3: यादें।
1: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
4: मुझे कुछ कहना है,
5: मुझे भी कुछ कहना है।
1: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
6: सुनिए।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास को, बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और फिल्म का नाम है आग और शोला।

आग और शोला, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना। स्वर दिया था अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास ने। शब्द रचना इंदिवर की, क्षमा कीजिए, आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए अब सुनते हैं जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा को, बोल गौहर कानपुरी के, संगीत राजकमल का, और फिल्म का नाम है सावन को आने दो।

0: सावन को आने दो। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, स्वर दिया था जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा ने। शब्द रचना गौहर कानपुरी की थी और धुन बनाई थी राज कमल ने। इस गीत के साथ ही क्षेत्रपट संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, हम आपको एक बार पुनः याद दिला दें, इसी सभा में 10:30 पर क्षेत्रपट संगीत का पुनः आनंद ले सकेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 9:40 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं आशा सिंह मस्ताना। पहले सुनते हैं नानक देव की ये रचना।

0: आशा सिंह मस्ताना के स्वर में ये था नानक देव का शब्द। सुगम संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति

सुगम संगीत इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं आशा सिंह मस्ताना। आइए अब सुनते हैं आशा सिंह मस्ताना और सुरिंदर कौर के स्वर में ये पारंपरिक लोकगीत।

0: आशा सिंह मस्ताना और सुरेंद्र कौर के स्वर में ये पारंपरिक लोकगीत अभी आप सुन रहे थे। इसके साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 9:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल और आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई। प्रदेश में 11 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल आयोग बोर्ड समिति और अन्य संस्थाओं में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर गौरी शंकर श्रीवास की नियुक्ति की गई है। वहीं राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का दायित्व डॉ ममता साहू को सौंपा गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद पर रामलाल चौहान और उपाध्यक्ष पद पर वेदराम मनहरे की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष आनंद निषाद को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के अध्यक्ष पद का दायित्व राजेश कुमार राजपूत को सौंपा गया है। वहीं शाकम्भरी बोर्ड के अध्यक्ष पद पर राजेंद्र नायक की नियुक्ति की गई है। इसी तरह छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग के अध्यक्ष पद पर सुधीर गौतम की नियुक्ति की गई है। जारी आदेश के अनुसार रायपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर डॉ जे पी शर्मा, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष पद पर किशोर महानंद, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष पद पर आनंद कुमार तिवारी तथा छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर मंगल दास ठाकुर की नियुक्ति की गई है। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके अलावा राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला आदेश भी जारी किया है। राज्य की 11 जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा गोकुल राम रावटे को जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता जिला पंचायत मोहला मानपुर, ऋषिकेश तिवारी जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयाम जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास को जिला पंचायत कोरिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है। विजेंद्र सिंह को नगर पालिका चिरमिरी, जी आर मरकाम नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए हैं। रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण हुआ। यह विस्फोट इतना भीषण था कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मारे गए मजदूरों में 2 मजदूर मध्य प्रदेश के हैं, जबकि 1 मजदूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। इस फैक्ट्री में पिग आयरन की रिफाइनिंग का काम होता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आज सुबह कवर्धा में नए भाजपा कार्यालय का लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री आज शाम रायपुर के डूमर तराई में विकसित अत्याधुनिक नवीन थोक बाजार का नामकरण और लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास मंत्री ओपी चौधरी करेंगे। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा रायपुर के बैरन बाजार स्थित शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक कॉलेज में आज सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर 338 पदों पर भर्ती की जाएगी और आवास और पर्यावरण विभाग के सचिव तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष अंकितानंद आज रायपुर में मानसून के दौरान राज्य की औद्योगिक इकाइयों में संचालित वृक्षारोपण कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न निगम मंडल और आयोग में अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की गई। प्रदेश में 11 जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप 11:55 पर सुन सकते हैं। नमस्कार।
0: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए पंडित अरुण कुमार भादुड़ी का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी में ख्याल। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है। बोल हैं तेरी महिमा बरनी न जाई। द्रुत रचना 3 ताल में निबद्ध है। बोल हैं दुर्जन के संग कभू न कीजिए। संगतकार हैं तबले पर संपतलाल और सारंगी पर आशिक अली खां।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित अरुण कुमार भादुड़ी का गाया राग कोमल ऋषभ आसावरी में ख्याल। संगतकार थे तबले पर संपतलाल और सारंगी पर आशिक अली खां। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर को भी आपने सुना फिल्म बेताब में। शब्द रचना आनंद बख्शी की थी और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। लीजिए सुनिए एक सूचना। सोमवार 13 जुलाई को प्रसारित होने वाले हेलो युवाणी कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज बुधवार को सुबह 11 बजे से 11:30 तक की जाएगी। हमारा फोन नंबर है 400-3482-400-3483-400-3483-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484-400-3484
तो फोन करिएगा आज सुबह 11 बजे। सूचना समाप्त हुई।

0: येसुदास और लता मंगेशकर को भी आपने सुना फिल्म त्रिशूल में। शब्द रचना साहिर की थी और धुन बनाई थी खयाम ने। श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
3: फोन इन फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो स्टेशन बोल रहा हूँ सर।
4: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
2: कुछ आवाजें गीतों के संग घुल मिल जाती हैं।
5: गीत मेरे होठों को गया कोई।
2: कभी कोई किस्सा याद आता है।
6: यादे।
2: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
7: मुझे कुछ कहना है,
8: मुझे भी कुछ कहना है।
2: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
9: सुनिए

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मीडियम वीव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र से। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर को फिल्म वारिस में, बोल वर्मा मलिक के संगीत उत्तम जगदीश का।

राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में ये था इंदेवर का लिखा गीत। फिल्म कामचोर के लिए स्वर दिया था किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। आइए अब सुनते हैं अलका याज्ञिक और मनहर उदास को फिल्म जानवर में, बोल समीर के, संगीत आनंद मिलिंद का।

0: अलका याज्ञिक और मनहर उदास को भी आपने सुना फिल्म जानवर में। शब्द रचना समीर की थी और धुन बनाई थी आनंद मिलिंद ने। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11 बजने वाले हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता में प्रांबानन मंदिर का दौरा करेंगे। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रांबानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे बड़े मंदिर हैं। भारत और इंडोनेशिया ने प्रांबानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कल एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अलनीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों में छापेमारी की। छापेमारी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। मामले की जांच जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भारत की मानवीय सहायता को स्वीकार करने के लिए वेनेजुएला का धन्यवाद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जायसवाल ने कहा कि ये राहत अभियान दोनों देशों के बीच गहरी मित्रता को दर्शाता है। भारत ने विनाशकारी दोहरे भूकंपों के बाद वेनेजुएला की मदद के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा की संभावना है। गुजरात क्षेत्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज के साथ आंधी की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। केरल में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है, हालांकि जिलों में येलो अलर्ट जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धैर्य किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि ये देश को सबसे कठिन चुनौतियों के बीच भी एकजुट रहने की प्रेरणा देता है। संस्कृत का एक प्रेरक कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि धैर्य किसी राष्ट्र को निरंतर प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 11:05 हुए हैं। ईमेल भेजाओ, छत्तीसगढ़ी गीत सुनो। लीजिए सुनिए हमारा ये साप्ताहिक प्रसारण।

संगवारी हो ये कार्यक्रम में सबले पहली हम सुनथन भगवती साहू और चंद्रराम साहू के स्वर में गीत। ये गीत ला सुने खातिर बर हमला ईमेल पठोए हैं हटौत बाजार ले कमलनाथ पटेल, राकेश कुमार पटेल, समीर पटेल, राजकुमारी पटेल, पोटिया कला ले संजय साहू, सुजाता सीमा ससांग साहू, कन्यावाड़ा ले देवेंद्र कुमार सोनवानी, लक्ष्मी सोनवानी, राहुल साहू, आशीष टेमरे, वेद प्रकाश सहारा, बंटी उन्द्रा, यशराज तारम, गीतिका गिन्नी, दादू उइके। धरसीमा ले छेदूलाल यादव, सीता यादव, अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव, रानू खुशी, प्रवीण कुमार साहू और इकबाल कुरैसी। सिमगा ले लव कुसेन, सविता सेन, सविता जैन, प्रदीप जैन और रमेश यादव। नवाग्रह कटेले चंद्रकांत शारदा पुष्पांजलि नारायण प्रसाद वर्मा। ग्राम करही भदरली पुरुषोत्तम निर्मलकर, श्रद्धा निर्मलकर, लोचन विद्यार्थी, गीतिका गुड़िया, कृष्ण कुमार निर्मलकर, उमा कृपाराम और लखनी निर्मलकर। तो आओ आप जम्मू जन की फरमाइश में सुनथन भगवती साहू और चंद्रराम साहू के स्वर में ये गीत।

भगवती साहू और चंद्रराम साहू के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने। ईमेल भेजाओ, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। ये कार्यक्रम आप मन सुनत हो मीडियम वेव और एफएम बैंड में आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ले।

ये खनकती आवाज अब आप सुन सकते हैं और भी बेहतरीन क्वालिटी में, कभी ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके तो कभी हेडफोन पर लगाकर। आकाशवाणी रायपुर का प्रसारण अब उपलब्ध है मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर। चाहे पास रहें या दूर, आपके करीब हर पल आकाशवाणी रायपुर।

0: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं YouTube पर। YouTube पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो YouTube पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
1: ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। ये कार्यक्रम आप मन सुनत हो मीडियम वी व FM बैंड पे आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ले आवाओ। अब सुनथन दलेश्वर दास साहू और संगवारी मन के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीत ला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठो हैं कांकेर संबलपुर ले फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, भीमखोज खल्लारी ले छोटी पिंकी सरोज और जीएल साहू, भाटापारा ले दान सिंह रावत, पद्मनी रावत, शुभम सौरभ रावत, भाटापारा ले हमारा संगवारी हैं बचकमल, डॉक्टर बसंत भिगु, विनय ठाकुर, मोतीलाल, विष्णु साहू, पूरब साहू, वीरा, हर्ष, कुमकुम, योगेश्वरी साहू, हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू, चंपा साहू, भाटापारा ले हमारा संगवारी हैं पुनियाबाई औ नारायण यदु, ग्राम पहरा ले पोषण बंछोड़, चंद किरण बंछोड़, तखतपुर ले मिश्रीलाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, गंडई टिकरीपारा ले जागेश्वर देवांगन, कचरीबाई देवांगन, दीपक कुमार देवांगन, जयश्री देवांगन, ऋषभ ऋचा देवांगन, दामापुर बाजार ले भोजराम भोज कुमार बंजारे, लक्ष्मी बंजारे, दीपक और दीपिका बंजारे, सहा मालगी ले आकाश कुमार चंद्रवंशी, सुखनंदन चंद्रवंशी, लोहारी डिहले अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी साहू, खुशांत और निशांत साहू, महादेवघाट अमलेश्वर ले डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रयांश ठाकुर, दतरेंगी ले द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद कुमार वर्मा, पिपरिया ले कमलकांत गुप्ता, दीपक गुप्ता आओ रिमझिम गुप्ता। तो आओ आप जम्मो झन के फरमाइश में सुनथन दलेश्वर दास साहू और संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

दलेश्वर दास साहू संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुनियो। कार्यक्रम के अगला गीत ला स्वर दे हैं गंगा बाई गेडाम और संगवारी मन। ये गीत ला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठो हैं मेघापारा चिल्फी ले संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक और टेकलाल पटेल, धमनी किरवई ले समीलाल धीवर, गोविंद धीवर, युवांश धीवर, मुन्नी धीवर, ममता धीवर, लच्छनपुर ले रामजी साहू, जीवन रजक, निम्मी शिवम सतीश मुकेश साहू, पिथौरा ले एफ एनन, अरण पिथौरा ले कौतुक पटेल, गौरी पटेल, काजल पटेल, पायल पटेल, यहाँ ले हमारे संगवारी हैं अमर सिंह पटेल और जयराम पटेल, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री धमतरी ले चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम शिखा सेफाली, गंडई पंडरिया ले दरियानामल मोटवानी, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम अनिल राज मोटवानी, तिलदा ले हरीश कमल सेतपाल भूमिका सुशीला, निजामाबाद आंध्र प्रदेश ले वासुदेव सावलानी और अशोक कुमार सावलानी। आवाओ आप जम्मू झन की फरमाइश में सुनथन गंगाबाई गेडाम और संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

गंगा भाई गेडाम और संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। कार्यक्रम के अगला गीत विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में। अवे गीत ला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठवा है भलेसर महासमुंदले बलराम सेन इंदु सेन छगन सिन्हा द्वारिका सिन्हा ग्राम भूत कछार लूरमिली निर्मला दीपक प्रीतम धनराज मरकाम चिरमिरी कुरासिया कालरिली इंद्रभान सिंह अनुभव ऋषभ सिंह राम सहोदर अड़ान नानघाटली माखन चांदनी वर्मा कुटेना पांडुकाली टीकम भूषण धुरवा कुसुम वासुदेव मोक्षदेव कामती आओ झम्मू मिलाईगढ़ली रोशनलाल देवांगन कौशल्या देवांगन हेमलता आओ डिंपल देवांगन इहेले खीकराम देवांगन धर्मेन्द्र देवांगन मलाजखंड डूंगरियाली मुन्नालाल पटले माधुरी पटले याचना पटले दीपांशु पटले अनूपपुर मध्य प्रदेश ले जयमंत्री केवट अंजलि केवट रुद्दानी केवट कृष्णा केवट भिलाई तीन ले डॉक्टर नौसाद अहमद सिद्दीकी बेगम हमीदून सिद्दीकी जिशान अहमद सिद्दीकी शाहनवाज अहमद सिद्दीकी पुतकी कलाली राधेश्याम पांडे वीणा पांडे वीणा शंकर पांडे नयन पांडे सोमांशु पांडे भाग्यलक्ष्मी पांडे गुनगुन पांडे महासमुंद भीषम दास मानिकपुरी नर्मदा हिरमानी दीपक दास मानिकपुरी सालेभाटा महासमुंद जीतू ध्रुव केवल ध्रुव किरण दिव्यांशी औखेमु ध्रुव हिच्छा महासमुंद अदालत दास वैष्णव मानस दास वैष्णव सतीश ऋचा गायत्री वैष्णव और खट्टी महासमुंद हमर संगवारी है सुभाष शर्मा छाया शर्मा आवाओ आप जम्मू झन के फरमाइश में सुनथन विदुषी ममता चंद्राकर के स्वर में ये गीत।

ममता चंद्राकर और संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। आवो आप सुनथन मनीराम साहू और संगवारी मन के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीत ला सुनने खातिर पर हमला ईमेल पठवा है नारायणपुर ले दिनेश्वरी बंजारी, मनीष बंजारी, ग्राम भदरसी ले घनाराम सेन, गीतेश सेन, दीपेश सेन, निर्मला सेन, इन्हें हमारे उस संगवारी हैं पन्ना लाल सेन, तारा सेन, खुशबू सेन, खमार मुड़ा ले शिवाय गिरी गोस्वामी, एकांशी गोस्वामी, डोंडी लोहारा ले देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव, डॉली बेबी पूजा, राधिका प्रभा देवी, अल कबीर, किकिर मेटा ले संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा, छछान पारी अंबागढ़ चौकी ले रधन राम साहू, गायत्री बाई साहू, ओम प्रकाश साहू, हेमिन साहू, भीम खोज तरपुंगी ले संतोष गुप्ता, हितेश होमेश शीतल लक्ष्मी प्रतिभा गुप्ता, आवरा डबरी ले श्यामलाल साहू, मोगरा संगीता केसरी चिंकी साहू, चर डुंगरी पिपरिया ले दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, कुमारी साहू, इंद्राणी माया साहू, जय किशन साहू, योगेश साहू, वासु साहू, हेमा और राधिका साहू, धमतरी ले रामचंद माखीजा, सविता माखीजा, स्वाति माखीजा, किरत राय वाधवानी, दीपक घनशानी, प्रदीप कुमार साहू, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डूडवानी, संतोष ध्रुवंशी और मास्टर सानू ध्रुवंशी। तो आवो आप जम्मो जन के फरमाइश में सुनथन मनीराम साहू और संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

0: मनीराम साहू और संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। ये कार्यक्रम आप मन सुनत हो मीडियम वी व एफएम बैंड पे आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ले।
1: आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।
2: बिंदिया शहरी महिलाओं का अनोखा कार्यक्रम सुनना ना भूलिए। प्रत्येक रविवार, सोमवार और गुरुवार को दोपहर 1:30 से दोपहर 2 बजे तक महिला समस्याओं का समाधान है बिंदिया। मीठी मीठी बातों का गुणगान है बिंदिया। डॉक्टर की सलाह, परिचर्चा, वार्ता और गीत संगीत की बहार है बिंदिया। हेलो बिंदिया में बहनों के विचारों और गीतों का संसार है बिंदिया।
0: ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। ये कार्यक्रम आप मन सुनत हो मीडियम वी वाओ एफएम बैंड पे आकाशवाणी के रायपुर और सरायपाली केंद्र ले। आवाओ अब सुनथन पवन चंद्राकर और संगवारी मन के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीत ला सुने खातिर बार हमला ईमेल पठो है चरौदा 12 नवापारा ली नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर, लाखा टोला ले मनु यादव, दुर्गेश, गोपीचंद, मुस्कान, रुक्मणी, ग्राम बघेरा ले संतोष नामदेव, सार्थक, शौर्य, समर्थ नामदेव, कुनासी ले पवन कुमार साहू, क्रांति साहू, पंकज साहू, ग्राम बम्बुडी बावनकेरा ले डिगेश महिलांग, चंद्रकांत महिलांग, रमाकांत महिलांग, रायपुर ले रानू साहू, खुशी साहू, हीरा साहू, विनोद वंडलकर, विविधा वंडलकर, वीणा वंडलकर, तुषार देवांगन, भूपेश देवांगन, प्रभा देवी देवांगन, मोहन देवांगन, रवीना लखानी, कमल लखानी, मनोहर डिंगवानी, राकेश डिंगवानी और सेज बहाली राम भांडेकर, रेणु भांडेकर, पथरिया भरेवाली चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमे सिंगरोल, नेहा और वान्या सिंगरोल, बन बघेराली योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज नीलेश, अंजलि सारवा, रोशनी सारवा, गर्रापार बांधा बाजार ले गंगाराम साहू, सुलोचना साहू, राकेश साहू, मानवीन साहू, पदुमनगर भिलाई ली दिनेश देवांगन, भागशी देवांगन, पुष्कर देवांगन, अवंशिका देवांगन, छिरहा बेमेतरा ली दिलीप जायसवाल, दिलेश्वर जायसवाल, दीपक विहू, चित्रांश और देवांश जायसवाल, अंबागढ़ चौकी ली रिजवान खान। आवाओ आप जम्मू जन की फरमाइश में सुनथन पवन चंद्राकर और संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

पवन चंद्राकर और संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुने हो। आवाओ अब सुनथन मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे के स्वर में कार्यक्रम के अगला गीत। ये गीतला सुने खातिर बर हमला ईमेल पठोए हैं दुर्रा बांधाली प्रमोद साहू देव कुमार साहू नवीन कुमार और युवराज साहू पीपरलूट सरगावली दीपेश वर्मा पूनम वर्मा ज्योति अवधि शिवांश वर्मा रिमनीले दिनेश वर्मा करुणा वर्मा बिडोटाली पंचू यादव भूखिन पिया सेवक और ऋतु यादव घटारानी अंचल फुलझरली योगेश्वर साहू डुमेश्वरी साहू यामिनी साहू मुस्कान और हर्षिता साहू इहले औ संगवारी हैं नयन साहू पूर्वी साहू ग्राम दहान बांधा बाजार ले हरिओम साहू रेवाराम साहू रानू साहू सरस्वती साहू प्यारी राम साहू परमानंद साहू इहले हमारे औ संगवारी हैं कुमारी देवी साहू पार्वती देवी साहू ज्योति रानी साहू सृष्टि साहू कोमेन साहू हिरेन रूपल और जगुतीन बाई साहू सनेचरी बाजार रुआ बांधाली सुशील जैन कल्पना जैन सौरभ जैन शुभम जैन श्रेया जैन ग्राम सीता कसा उमर वाहिली कुबेर सिंह साहू सरस्वती साहू शेर सिंह साहू उर्मिला देवी साहू वावाओ आप जम्मू जन की फरमाइश में सुनथन मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे के स्वर में ये गीत।

निषाद, निखिल नैतिक, स्वप्निल कुमार और पुष्पांजलि निषाद, नेताम टोला मोहल्लाली, नंद कुमार साहू, ठाकुर राम साहू, टेकराम, दुर्गा साहू, खुमेन लुमेन, टोमिन साहू, भानपुरी मुसराले, आत्माराम यादव, विदेशी तुलसी यादव, परसा टोला अम्बागढ़ चौकी ले, ओम प्रकाश मसिया, सुलोचनी मसिया, खुमेन तुसारनी मसिया, चांदो डोंगरगांव ले, छन्नूलाल साहू, मधु साहू, प्रेमबाई साहू, सुरसुली ले, कैलाश यादव, योगेश कुमार और डिगेंद्र यादव, जुनवानी ले, सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, नीलकंठ साहू, किशन साहू, लमानिन भाटा मुसराली, बसंत कुमार विश्वकर्मा, लीला देवी विश्वकर्मा, तरुण कुमार और इंजीत विश्वकर्मा, कांडे मानपुर ले, रूप सिंह साहू, शैलेन्द्र साहू, रामदयाल साहू, गेंदा टोला बाजार ले, वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता। तो आवा आप जम्मो झन के फरमाइश में सुनथन श्रवण कुमार साहू और संगवारी मन के स्वर में ये गीत।

श्रवण कुमार साहू और संगवारी मन के स्वर में ये गीत अभी आप मन सुनियो। एकरे संग ईमेल भेजाओ छत्तीसगढ़ी गीत सुनो, ये कार्यक्रम यह सिरावत है। आओ अपन संगी ससांग खरेला दो आज्ञा, ये कार्यक्रम पर गीत जुड़े रहीन है बीरभान साहू।

0: ईमेल भेजाओ, छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। हमारा साप्ताहिक प्रसारण अभी आपने सुना। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 11 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए। मुख्य

0: मंत्री ने कहा कि किसानों को B1 खसरा ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। अब समाचार विस्तार से। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। इसके अलावा राज्य शासन ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों का तबादला आदेश भी जारी किया है। राज्य की 11 जिला पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए हैं। प्रतीक जैन को जिला पंचायत कोरबा, जयंत नाहटा को जिला पंचायत धमतरी, एम भार्गव जिला पंचायत दंतेवाड़ा, तन्मय खन्ना जिला पंचायत बस्तर और दुर्गा प्रसाद अधिकारी को जिला पंचायत राजनांदगांव का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके अलावा गोकुल राम रावटे को जिला पंचायत मुंगेली, आशुतोष चतुर्वेदी जिला पंचायत बलरामपुर रामानुजगंज, अभिषेक कुमार गुप्ता जिला पंचायत मोहला मानपुर, ऋषिकेश तिवारी जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़, विनय कुमार पोयाम जिला पंचायत जांजगीर चांपा और योगेंद्र श्रीवास को जिला पंचायत कोरिया का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया गया है। इसके साथ ही सुरुचि सिंह को नगर पालिका निगम भिलाई का आयुक्त बनाया गया है। विजेंद्र सिंह को नगर पालिका चिरमिरी, जीआर मरकाम नगर निगम राजनांदगांव और अरुण वर्मा नगर पालिका धमतरी के आयुक्त बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किसानों को B1 खसरा ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने को कहा। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, राजस्व अभिलेखों के डिजिटलीकरण और ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार पर भी जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान अधिकृत प्रत्याशी का वोट निरस्त होने के मामले में कार्रवाई की है। प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने बताया कि प्रत्याशी और उनके पिता का जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये हादसा ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट के कारण हुआ। ये विस्फोट इतना भीषण था कि 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य मजदूर ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। मारे गए मजदूरों में 2 मजदूर मध्य प्रदेश के हैं, जबकि एक मजदूर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का रहने वाला था। इस फैक्ट्री में पिग आयरन की रिफाइनिंग का काम होता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रख्यात पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई को आज दोपहर रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय परिसर स्थित मुक्ताकाशी मंच पर संगीतमय श्रद्धांजलि दी जाएगी। संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के अनेक लोक कलाकार गीत पंडवानी और लोक कला की प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वर्गीय तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। मुख्यमंत्री आज सुबह कवर्धा में नए भाजपा कार्यालय का लोकार्पण करेंगे और मुख्यमंत्री आज शाम रायपुर के डुमरतराई में विकसित अत्याधुनिक नवीन थोक बाजार का नामकरण और लोकार्पण करेंगे। समारोह की अध्यक्षता आवास मंत्री OP चौधरी करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 11 जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को B1 खसरा ऋण पुस्तिका और भूमि संबंधी जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। और रायपुर के पास उरला में एक फैक्ट्री में कल शाम हुए हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वहाँ क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह, ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई। योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी, आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी, मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी, तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ, यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ, आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ, इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है, रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी, आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: अजीत जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता
3: जी। विमलेश जी, श्रोताओं, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
3: जी। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
3: श्रोताओं, आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
3: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
2: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
3: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
4: संध्या को हम खेलने जाते,
3: मित्रों संग आनंद मनाते,
4: मित्रों संग आनंद मनाते,
3: कभी दौड़ना और उछलना,
4: कभी दौड़ना और उछलना,
3: कभी गेंद के खेल खेलना,
4: कभी गेंद के खेल खेलना,
3: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
4: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
3: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
4: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
3: गिल्ली डंडा सबको भाता,
4: गिल्ली डंडा सबको भाता,
3: सतोलिया भी मजा दिलाता,
4: सतोलिया भी मजा दिलाता,
3: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
4: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
3: या हंस हंस के बातें करना,
4: या हंस हंस के बातें करना,
3: जब अंधेरा होने लगता,
4: जब अंधेरा होने लगता,
3: सबको कुछ डर लगने लगता,
4: सबको कुछ डर लगने लगता,
3: तब हम घर को वापस आते,
4: तब हम घर को वापस आते,
3: कल खेलेंगे यह कह जाते,
4: कल खेलेंगे यह कह जाते।
3: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या। अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए।

0: उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।
1: ऐसा ही एक महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशुपालन। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता ये है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटू नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटू पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर निजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।
2: देखो वेलिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्स-रे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो, आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीट जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें।
3: हाँ।
2: गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना, कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं, इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं। एक तरह से अच्छा भी है, आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 102.8 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 12:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज़ों में हसरत जयपुरी की रचना।

सुगम संगीत का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए हसरत जयपुरी की रचना उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में।

लीजिए अब सुनिए, उस्ताद मोहम्मद हुसैन और उस्ताद अहमद हुसैन की आवाज़ों में हसरत जयपुरी की ये गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार थे उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी सुन रहे हैं। दोपहर के 1 बजे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
1: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
0: प्रधानमंत्री तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाज रोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:05 हुए हैं। चित्रपट संगीत में पहले सुनिए आंधी, इस फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की ये आवाज़ों में, गुलजार की रचना, संगीत आर डी बर्मन का है।

चित्रपट संगीत में लीजिए अब सुनिए अजनबी, इस फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना संगीत आर डी बर्मन का है।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी की रचना, संगीत राहुल देव बर्मन का है, फिल्म कटी पतंग से।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत सुनिए, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी की रचना, संगीत राजेश रोशन का है।

चित्रपट संगीत में अभी इतना ही। मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:25 हुए हैं। श्रोताओं, अब आपको बता दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी।

रात 8:30 पर सुनिएगा स्पोर्ट्स कैन और रात 9:30 पर चर्चा का विषय है ये कार्यक्रम। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में 1:30 पर आप सुनेंगे बढ़ते जन घटता जंगल। ये रूपक लेखिका हैं डॉक्टर अनिता सावंत और प्रस्तुतकर्ता होंगे मोहन सी रामानी। 2:30 पर सुनिएगा प्रकृति के बाद आकाशवाणी के साथ कि 8वीं कड़ी में पौधरोपण से जुड़े हरियाणा के देवेंद्र सुरापर केंद्रित कार्यक्रम।

युवाओं का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5:10 पर। इसमें आजकल का विषय होगा सफलता सुविधा की मोहताज नहीं होती, साथ ही पत्र मिला और युगल गीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 6:30 पर कलाकार होंगे चंद्रकांत गंधर्व और इसी कार्यक्रम में रात 8:15 पर कलाकार होंगे आशा सी मस्ताना।

चौपाल ये कार्यक्रम होगा शाम 7:21 पर। इसमें क्रम आज की बात का विषय होगा मौसम पूर्वानुमान खेती मा लाभकारी उपयोगी। क्रम आज की सलाह में खरीफ प्याज की उन्नत खेती इस विषय पर डॉक्टर दीपिका चंद्रवंशी, विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र धमतरी के द्वारा दी गई जानकारी। रात 10 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर पर बजाया राग कलावती। श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 305.81 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए बढ़ते जन घटता जंगल ये रूपक। लेखिका है डॉक्टर अनीता सावंत, प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी।
1: लीजिए सुनिए आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति समन्वित रूपक बढ़ते जन घटता जल। लेखक डॉक्टर अनीता सावंत, प्रस्तुत करता है मोहन सी रामानी। तो लीजिए सुनिए रूपक बढ़ते जन

0: राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। रहीम के इस सर्वकालीन दोहे में जीवन का दर्शन है और जीवन की आवश्यकता भी। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का आधार जल को ही माना जाता है। किसी भी दूसरे ग्रह पर जीवन की खोज का आधार भी जल ही होता है। धरती पर जीवन के उद्भव से लेकर उसके अब तक के विकास की कहानी का आरंभ वास्तव में जल से ही हुआ और आज भी वो इसके आसपास ही घूम रही है। हमें ज्ञात है कि इस धरती पर मानव सभ्यताएं जल स्रोतों के किनारे ही पनपी और विकसित हुई। धरती पर यदि ये प्राकृतिक जल स्रोत न होते तो शायद हम मानव सभ्यता के विकास का ये क्रम भी नहीं देख पाते।
1: पानी की हर बूंद में जीवन व्याप्त है। वास्तव में इस सृष्टि में जीवन की प्राथमिक आवश्यकता हवा के बाद यदि कोई है तो वो है पानी। पानी के बिना क्या हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना कर सकते हैं? जल जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते।
0: लेकिन ये क्या मनुष्य की अतृप्त प्यास ने पृथ्वी की सतह के ऊपर और उसके भीतर स्थित जल स्रोतों को धीरे धीरे सोखना शुरू कर दिया? प्रकृति से लेने और सिर्फ लेने की मनुष्य की प्रवृत्ति ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया। प्राकृतिक जल स्रोतों के साथ भी उसने वही किया, लेकिन जिस प्रकृति ने कुदरत में अपनी गोद में उसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या मनुष्य उससे अधिक ताकतवर हो सकता है?

0: वर्ष दर वर्ष मानवीय गतिविधियों के उपयोग योग्य पानी की उपलब्धता का कम होना भविष्य के संभावित भीषण जल संकट का सूचक है, खासकर तब जब आबादी तो दिनों दिन बढ़ रही है और जल स्रोत या तो कम होते जा रहे हैं या उनकी जल संग्रहण क्षमता कम हो रही है। प्रतिवर्ष पानी की उपलब्धता के लिए बोरवेल या नलकूप को गहरा करवाना इस बात का साफ संकेत है कि सतह पर तो जल स्रोत सूख ही रहे हैं, भूमिगत जल भी रसातल की ओर जा रहा है। उपयोगी जल की उपलब्धता को बताते हुए वरिष्ठ वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर A.L. राठौर।
1: विश्व का जो उपयोगी जल है उसका लगभग 4% जल भारत में उपलब्ध है और उसमें लगभग 16% जनसंख्या विश्व की भारत में रहती है और 4% सतही जल से उसका अपना भरण पोषण करती है। कुल 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल भारत में उपलब्ध है और 432 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ में 41.7 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल उपलब्ध है और भूजल की उपलब्धता है 13.7 बिलियन क्यूबिक मीटर, जिसमें यदि हम उपयोग की बात करें तो 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल उपयोग हो रहा है और 2.8 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का उपयोग हो रहा है। भारत में 694 क्यूबिक किलोमीटर पानी अभी आवश्यकता है। यदि भारत में यदि 2025 की बात करें तो 784 क्यूबिक किलोमीटर पानी की आवश्यकता होगी और 2050 की बात करें तो 973 क्यूबिक किलोमीटर पानी की आवश्यकता होगी। बिना भूजल भरण के यदि भूजल का निकास होता रहे तो निश्चित ही राजस्थान की स्थिति आएगी जब 1000 फुट भी आप खोदेंगे तो भी आपको पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा।
2: एक ओर तो वर्षा की कमी स्पष्ट परिलक्षित हो रही है, वहीं दूसरी ओर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है। देश की आबादी 1,15,000,000,000 तक जा पहुंची है। शहरीकरण, शहरों का विस्तार बड़ी तेजी से हो रहा है।
0: स्पष्ट है कि ज्यादा लोगों के लिए पानी की आवश्यकता भी अधिक होगी, लेकिन विडंबना यह है कि जनसंख्या के बढ़ने के साथ जल संसाधन संकुचित होते जा रहे हैं।
2: बढ़ती हुई जनसंख्या और सूखते कम होते जल स्रोत अर्थात खतरे की घंटी बज चुकी है। आज भी अनेक क्षेत्रों में महिलाओं का प्रमुख काम पानी भरना रह गया है। 2-3 किलोमीटर तो कहीं कहीं इससे भी ज्यादा दूरी से पानी को ढोना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। यही नहीं, आज की सुविधा भोगी शहरी जिंदगी भी पानी की किल्लत झेलने को मजबूर है।
0: सूखे बोर और नलों से बूंद बूंद टपकता पानी गर्मी के दिनों को और भी दुष्कर बना देता है। टैंकरों के इंतजार में पॉश कॉलोनियों के रहवासी भी आंखों में रातें काट देते हैं। टैंकर आने के बाद पानी की छीना झपटी और मारा मारी अशोभनीय दृश्य पैदा कर देती है। जल संकट के कारणों को चिन्हित करते हुए आप हैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के भू विज्ञान अध्ययन शाला के रीडर डॉक्टर दुर्गापद कुईती।
3: पानी की कमी के मुख्य कारण है शहरीकरण, बहुमंजिल भवन के लिए पुनः भरण की समुचित व्यवस्था न होना, जल स्रोतों जैसे तालाब कुएं आदि की अवहेलना होना, तरन तालों की संख्या में वृद्धि अर्थात पानी की खपत में बढ़त किया जाना, निस्तारी हेतु तालाब के उपयोग में कमी आई है, शहरों में होने के कारण लोग तालाबों में नहीं जाते, अपने घर के बाथरूम में पानी का अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है, निवास हेतु कॉलोनी अथवा उद्योग लगाने के पूर्व आवश्यक जल की मात्रा का सूक्ष्म आकलन नहीं किया जाना, हमने पहले तो कॉलोनी बना लिया, निवास के लिए 200 फ्लैट बना दिए, 200 फ्लैट में रहने वाले अगर 1000 लोग हैं तो उनके प्रति व्यक्ति 40-45 लीटर के हिसाब से उस कितनी जल की खपत होगी उसका आकलन नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप जब हमने वहाँ बोरिंग की तो उतना पानी नहीं मिल पाया। समुद्री जल का कम लागत में लवण मुक्त कर उपयोग करने की दिशा में अधिक प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भारत के तीन तरफ जो है जो समुद्री जल है लवणयुक्त तो उसमें से अगर हम लवण को निकाल लें तो उस पानी को भी हम कर सकते हैं उपयोग। अन्य उपयोग जैसे कृषि, खेती, निर्माण कार्य हेतु पानी को शोधन कर पुनः उपयोग करने पर भी विचार किया जाना चाहिए। जो एक बार पानी जिसको रिसाइक्लेशन बोलते हैं उस पानी को भी हम लोग उपयोग किया जाना चाहिए। पानी के पुनर्भरण हेतु प्रयास में कमी, वृक्षरोपण और उसकी रक्षा को भी महत्व दिए जाने की चाहिए, क्योंकि हम बारिश में खूब वृक्ष लगा देते हैं और उसके बाद उसकी रक्षा का कोई महत्व नहीं देते। तो इस ढंग से तापमान में वृद्धि एवं जो वृक्ष जिससे हम पानी की उम्मीद करते हैं कि बादल आते हैं और बादल बनते हैं, बारिश होती है, तो वो होना चाहिए।
0: ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा के आगमन के साथ उमड़ घुमड़ कर बादल बरसते हैं, प्यासी धरती पर पानी की बौछार पड़ती है, तो उसकी हर बूंद धरती को तृप्त करती दिखाई देती है। पानी की बूंदों को स्वयं में समाहित करती धरती और उससे उठती माटी की सौंधी सुगंध वातावरण को खुशनुमा बना देती है। पेड़ पौधे झूम उठते हैं, तालाब अपनी बाहें फैलाकर वर्षा का स्वागत करते हैं और नदियां इठलाते हुए उमड़ने घुमड़ने लगती हैं।
2: जीवन दायिनी है ये वर्षा, लेकिन अब लगने लगा है कि ग्रीष्म ऋतु कुछ ज्यादा ही लंबी हो चली है। प्रदूषण और पर्यावरण असंतुलन के सबसे जटिल दुष्प्रभावों के रूप में हमारे सामने है जलवायु परिवर्तन।
0: धरती का ताप बढ़ता जा रहा है, निरंतर ऐसा होने के कारण वातावरण की आर्द्रता कम हो रही है और ऋतु चक्र परिवर्तित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के ही कारण मानसून का आगमन सही समय पर नहीं हो रहा है और वर्षा काल की अवधि भी कम हो रही है और वर्षा की मात्रा भी। छत्तीसगढ़ पर्यावरण मंडल के अधिकारी श्री अमर सावंत बताते हैं।
4: वैसे तो जलवायु परिवर्तनों के कारणों को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक कारण और दूसरा मानवीय कारण। जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप इन परिवर्तनों में अप्रत्याशित तेजी आई है। लगभग 150 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुए औद्योगिकरण और शहरीकरण के दौर में मानवीय गतिविधियों के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में लगातार बढ़ोतरी होने के कारण पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है। वर्ष 1975 से वर्ष 2005 के बीच कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 31%, मीथेन की मात्रा में 151% और नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा में 17% की वृद्धि हुई है। मानवीय गतिविधियां परिवर्तन की इस गति के लिए जिम्मेदार हैं एवं वैज्ञानिकों के लिए यह चिंता का एक कारण है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्ष 2050 तक विश्व के तापमान में लगभग 1.5 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। जलवायु में हो रहे इन तीव्र परिवर्तनों के प्रमुख कारणों में वायुमंडल में मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ गैसों की मात्रा का बढ़ना, वाहनों एवं उद्योगों का धुआं और समाप्त हो रहे वन इनके प्रमुख कारणों में से हैं। प्राकृतिक कारणों में महाद्वीपीय अपसरण पहला कारण है, दूसरा ज्वालामुखी, तीसरा पृथ्वी का झुकाव और चौथा है समुद्री लहरें। महाद्वीपीय अपसरण इस प्रकार से जिम्मेदार है कि करोड़ों वर्ष पहले जब भूभाग शने शने अलग होने लगे थे, तब इस विखंडन का प्रभाव मौसम पर पड़ा, क्योंकि इसने भूभाग की भौतिक विशेषताओं, उनकी अवस्थिति एवं जल निकायों का स्थान परिवर्तित कर दिया। जहां तक ज्वालामुखी का प्रश्न उठता है, जब कोई ज्वालामुखी फटता है तो वातावरण में बहुत अधिक मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल एवं राख फेंकता है। यद्यपि ज्वालामुखी की गतिविधि कुछ दिनों तक ही रहती है, तथापि गैस एवं धूल की वृहद मात्रा कई वर्षों तक मौसम की संरचना को प्रभावित कर देती है। पृथ्वी का झुकाव इसलिए मौसम को परिवर्तित करता है क्योंकि पृथ्वी का जब अधिक झुकाव होगा तो इसका अर्थ यह होता है कि अधिक गर्मी और कम ठंड, कम झुकाव का अर्थ होगा कम गर्मी और अधिक ठंड। समुद्री लहरें, ऋतु व्यवस्था का एक प्रमुख घटक समुद्री लहरें हैं। पृथ्वी के 71% भाग में ये फैली हुई हैं और वायुमंडल या भूमि से 2 गुना सौर विकिरणों को अवशोषित करती हैं। समुद्री लहरें ताप की एक बड़ी मात्रा को ग्रह के अन्य भागों में फैलाती हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन का एक कारण समुद्री लहरें हैं।

0: काल में हमारे देश में जल के संग्रहण और संचयन के लिए कुएं, बावड़ियां और तालाब बनाए जाते थे, जिनमें वर्षा काल का जल संचित होता था और वर्ष भर लोगों को उनकी आवश्यकतानुसार उपलब्ध होता था।
1: ये जल स्रोत वर्षा के जल का संग्रहण तो करते ही थे, भूमिगत जल स्रोतों को भी रिचार्ज कर भूमिगत जल स्तर को बनाए रखते थे। जनसंख्या बढ़ने के साथ इन जल स्रोतों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। जल प्रबंधन और जल संरक्षण के पारंपरिक और आधुनिक तरीकों को रेखांकित करते हुए डॉक्टर निनाद बोधनकर, रीडर भू विज्ञान और जल प्रबंधन अध्ययन शाला, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर।
2: आज हमारे पास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने ऐसी नई तकनीकों का इजाद किया है कि जिसमें कम से कम जल की मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ली जा सके। ऐसी खेती या ऐसे बीज विकसित किए हैं जो सूखे की स्थिति में भी खराब नहीं होते हैं और पैदावार है वह भी बनी रहती है, उसमें कोई कमी नहीं आती। जल प्रबंधन तकनीक यह कोई नई नहीं है, यह सिर्फ शब्दों का हेरफेर है। पारंपरिक स्तर पर हमारे यहाँ हमारे पूर्वज तालाब एवं डबरी का निर्माण करते थे, जो कि वर्षा के जल को ग्रीष्म ऋतु में उपयोग करने हेतु उनका जमीनी सतह पर उसका स्टोरेज किया जाता था। और आज हम उसी डबरी एवं तालाब निर्माण की तकनीक को हमने एक आधुनिक नाम दिया है, वाटरशेड मैनेजमेंट। यह विज्ञान की एक सफलता है कि वह प्रकृति को समझकर प्रकृति के साथ पानी का संरक्षण कर रहा है। वाटरशेड मैनेजमेंट आज हर पंचायत स्तर पर हर गांव में किया जा रहा है, परंतु यह स्थिति शहरों में कंक्रीटीकरण, नई इमारतों के बनने से जो खुले मैदान हैं इनमें कमी आ रही है, तालाबों को पाट कर उनकी जगह नए कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, तो यह जो वर्षा जल को रिसने में जो मदद करते थे अब इन जगहों की कमी हो रही है तथा शहरों में पानी का जल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल, बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है। तो शहरों के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है, तो यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने अपना महत्व दिखाते हुए ये कहा है कि आप रिचार्ज एरियाज को डिलीनेट करें, वह उन क्षेत्रों का डिमार्केशन करें जहाँ से पानी रिसता है और उन जगहों को प्रोटेक्ट करें। तो ये रिचार्ज और डिस्चार्ज एरियाज डिलीनेशन में भी कई मॉडर्न या आधुनिक तकनीकें हैं, जैसे न्यूक्लियर टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। दूसरा है रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स, जिसको सुदूर संवेदन तकनीक कहते हैं, कि इन उपग्रहों से प्राप्त चित्रों के द्वारा हम उन जगहों का निर्धारण कर लें कि जहां से वर्षा जल को रिचार्ज करने हेतु उपयुक्त पाई जाती हैं, और वहां से हम उन जगहों को हम प्रोटेक्टेड एरिया या संरक्षित क्षेत्र घोषित कर वहाँ किसी निर्माण का न होने दें। और भू भौतिकीय तकनीकों का भी उपयोग किया जा सकता है, जो कि हमें छिपे हुए जल को, भू जल को ढूंढने में मदद करेगा।
0: औद्योगिकीकरण और बढ़ते शहरीकरण के कारण भूमिगत जल स्रोतों का दोहन बढ़ा है, जिसके कारण जल स्तर 10 से 50 मीटर तक नीचे चला गया है। नित्य नए नलकूपों के उत्खनन के कारण भूमिगत जल स्तर और नीचे जा रहा है। पहले जहां 100 फीट की गहराई में पानी उपलब्ध था, अब वहीं 400 फीट की गहराई पर भी पानी नहीं मिल पा रहा है। कहीं कहीं तो 800 फीट गहराई पर पानी मिल रहा है।
1: जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान स्थिति को देखते हुए रायपुर की जनसंख्या आगामी 4 वर्षों में बढ़कर 15 लाख तक हो जाने की संभावना है। हम स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि तब, जबकि जल प्रदाय के स्रोत तो यही होंगे, लेकिन उपभोग करने वाले लगभग 1.5 गुना हो जाएंगे, तब लोगों को किस प्रकार जल आपूर्ति की जा सकेगी। रायपुर नगर पालिक निगम के महापौर श्री सुनील सोनी कहते हैं,
3: नगर निगम ने नियम बनाए हैं कि जो नक्शे पास करेंगे तो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बताएंगे तभी नक्शे पास करेंगे। नक्शे में उल्लेख होता है लेकिन धरातल पर उल्लेख नहीं होता, लेकिन जब मकान बनता है तो उसके बाद में हम जब उसकी कार्रवाई की नौबत आती है तब हम देखते हैं कि इस शहर के अंदर में 30% लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था की है, 70% लोग आज भी ऐसे हैं जो वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था नहीं किए हैं। तो हमने अभी एक अभियान जो चलेगा वो बड़े मकानों के लिए, बड़े कॉम्प्लेक्स के लिए, ये हम जो है जो बड़े लोग हैं उनके उसमें अभियान चलाएंगे, और वो अगर व्यवस्था उसमें एक समय सीमा होगी, उस समय सीमा में अगर वो व्यवस्था नहीं करते तो हम अनेक हमारे पास में नियम कायदे हैं उसके अंदर में हम उनके ऊपर में जुर्माना करेंगे। तो आप नगर निगम को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये व्यवस्था आप लागू नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी आपको कभी माफ नहीं करेगी।
0: सरकारी प्रयासों और योजनाओं को बताते हुए केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के निदेशक श्री आशीष चक्रवर्ती।
4: केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने सारे देश में लगभग 1600 ब्लॉक को चिन्हित किया है। इस क्षेत्र में डागवेल रिचार्ज का प्रकल्प चालू किया गया है जिसमें छत्तीसगढ़ के 8 ब्लॉक भी शामिल है। इसके तहत सारा देश में लगभग 7 लाख कुएं के माध्यम से वर्षा जल को संचयन एवं पुनर्भरण किए जाने का लक्ष्य रखा हुआ है। ये लगभग 800 करोड़ का प्रोजेक्ट है। भारत सरकार का 3R प्रोजेक्ट के तहत जलागारों को रिपेयर, रिनोवेट और रिस्टोर किए जाने का कोशिश भी किए जा रही है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग आदि द्वारा वर्षा जल संचयन और कृत्रिम पुनर्भरण के उपाय गांव-गांव में किए जा रहा है। भारत सरकार इस क्षेत्र में पर्याप्त फंड रखे हुए हैं और एक विशेष प्रकल्प के तहत किसानों को शोध कार्य में भागीदार बनाते हुए उनका खेतों में कृषि एवं जल संरक्षण की नए नए तरीका खोजने की कोशिश किया जा रहा है। ये सारे प्रयास महत्वपूर्ण है, लेकिन जल संरक्षण को सफल बनाने के लिए

0: केवल एक ही समाधान है, और वो है वर्षा के जल का उसके शुद्ध रूप में ही अधिकाधिक संचय और संग्रहण। जल स्रोतों के एक तरफा दोहन और उन्हें उनके ही हाल पर छोड़ देने की मानसिकता से हमें उबरना होगा। वर्षा जल संचय के बारे में जानकारी दी भूजल वैज्ञानिक श्री के पाणिग्राही ने।
1: बहुत ही कम खर्च पर जो है आप अपने घरों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए जो है वो जल स्तर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। 1000 वर्ग फीट छत पर अगर हम बरसात के पानी अगर हम रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं तो हम 1000 वर्ग फीट छत से कम 2.5 लाख लीटर पानी हम अपने ही घर के आंगन में ही इकट्ठा कर सकते हैं। कि अगर 2.5 लाख लीटर पानी अगर एक परिवार के लिए गर्मी के जो जिस तरह से समस्या आती है उन 4 माह के लिए करीबन 6 परिवार के सदस्य के लिए बहुत अच्छी जल उपलब्धता हो सकती है। छतों का जो भी वर्षा का जल है वो छतों में से जहाँ से भी अगर आप का पीवीसी पाइप के थ्रू जो है जहाँ बहकर जो ड्रेन में चला जाता है उन छतों का पानी को एक पीवीसी पाइप के माध्यम से एक ही तरफ से उतारा जाए और उतारने के बाद जो है घर के किसी भी किनारे में जहाँ पर ओपन थोड़ा सा भी गार्डन है, किचन गार्डन है या फिर खाली स्पेस है, वहाँ पर 2x2 और 4 फीट गहरा जो है पिट बना दीजिए। पीट का मतलब है गड्ढा छोटा सा, उसमें टुकड़े ईंटें बालू बजरी कोयला डलवा दीजिए, पूरा का पूरा पानी वहीं एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा जो है एक दूसरी तकनीकी है कि छतों का पानी लाकर जो है आप सीधे बोरवेल या ट्यूबवेल में डाला जा सकता है, बजाय कि उसके पहले आप एक फिल्टर के माध्यम से उसको फिल्टर प्रवाहित करके आप अपने बोरवेल में ट्यूबवेल में डाल सकते हैं। लेकिन आप अपना छतों के प्रॉपर इसको ध्यान रखिए, एक वॉल्व उसके पहले दीजिए कि जब भी आपको छत में कभी कोई धूल है कोई अन्य पदार्थ गिरे हुए हैं उसको बाहर निकाल दीजिए और फिल्टर के माध्यम से आप अपने बोरवेल या ट्यूबवेल में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बेकार पड़ा कुआं है, कोई बावड़ी है, तो आप उसमें भी अपना छत का पानी पूरा डाल सकते हैं। बोर 100 फीट 150 फीट में पानी हमेशा सूख जाता था, वाटर हार्वेस्टिंग के बाद जो है वो आज बहुत अच्छे चल रहे हैं, जबकि वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी लगाने के पहले मार्च महीने में ही सूख जाता था।
2: जल संरक्षण और प्रबंधन केवल सरकार की ही या विभागों की ही जिम्मेदारी नहीं अपितु हर नागरिक की इसमें अहम भूमिका होनी चाहिए। ऐसे ही एक जन जागरण अभियान को विगत दिनों रायपुर में भी चलाया गया। जानकारी देते हुए इसके समन्वयक श्री अमित स्वप्निल और अमनेश दुबे।
3: एक जो जल संकट की स्थिति है उसी से निपटने के लिए दैनिक भास्कर समूह ने पिछले 3 महीने से रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जागरूकता अभियान चलाया था। इसके तहत हमने बारिश का पानी स्टोर करके जमीन के भीतर कैसे पहुंचाया जाए जिससे पानी की तंगी दूर हो, यह बताने का प्रयास किया था। कमोबेश रायपुर के पूरे कॉलोनियों में हम गए थे और उन्हें अवेयर किया था कि आप बारिश के पानी को स्टोर करें, और इसका हमें अभूतपूर्व रिस्पांस भी नज़र आया।
4: हमने अभियान की शुरुआत 7 अप्रैल से शुरू की और 20 जून तक इस अभियान को हमने लगातार चलाया। शुरुआती दौर में तो लोगों ने अनेक आशंकाएं जताई कि इस सिस्टम से हमारे बोरिंग में जाने वाले पानी से ओवरफ्लो होगा, हो सकता है कि जो बरसात का पानी हो उसमें केमिकल्स हो, हमारे पीने योग्य पानी न हो, इसलिए काफ़ी आशंकाएं लोगों ने जताई। लेकिन धीरे धीरे हमने अपने एक्सपर्ट के माध्यम से, हमने ब्रोशर के माध्यम से लोगों को इस तकनीक के बारे में स्पष्टीकरण दिया। हमने जगह जगह प्रोजेक्टर के जरिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बताया। रेन जो पानी है, बरसात का पानी, वो 100% शुद्ध होता है, इसको इंटरनेशनल वाटर रिपोर्ट के आंकड़े प्रस्तुत किए। अनेक तरह के हमने उदाहरण लोगों के सामने प्रस्तुत किए जिससे उन्हें यह विश्वास हो गया कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो वास्तव में कारगर है वाटर लेवल बढ़ाने के लिए, जल संकट से निपटने के लिए। हमने शुरुआत किया, हम चलते गए और कारवां बनता गया।
2: वर्षा जल के अधिकाधिक संचय और संग्रहण के साथ ही उसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग भी जरूरी है। जल संकट के दौर में पानी की एक एक बूंद के लिए हम जद्दोजहद करते हैं, लेकिन वर्षा के समय और इसके बाद जब जल आपूर्ति सामान्य हो जाती है हम इस जल संकट की त्रासदी को भुला देते हैं।
0: जनसंख्या के विस्तार और हमारी दैनिक जरूरतों के साथ व्यापारिक, व्यावसायिक और औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें सीमित मात्रा में उपलब्ध जल का समुचित प्रबंध करना ही होगा। जल प्रबंधन हमारी आदतों में शामिल होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को संस्कारों

के रूप में इसे समझाना और सिखाना होगा। जल अमृत तुल्य ही नहीं बल्कि अमृत है। इस अमृत को हम अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखें। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है। जल है तो कल है।

अभी आप सुन रहे थे समन्वित रूपक, बढ़ते जन घटता जल। आलेख डॉक्टर अनीता सावंत का, वाचक स्वर थे दीपक हटवार और रेणुका काले, गायक कलाकार अंजलि शुक्ला और सुनील सोम, वादक कलाकार सत्यरंजन गंगेले, विजय कुर्म,

0: और ये थी आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति।
1: बढ़ते जन घटता जंगल, ये रूपक अभी आप सुन रहे थे। आलेख डॉक्टर अनीता सावंत का था, प्रस्तुतकर्ता थे मोहन सी रामानी, वाचक स्वर दीपक हटवार और रेणुका काले का था, गायक स्वर था अंजलि शुक्ला और सुनील सोनी का, वादक कलाकार थे रजी मोहम्मद, खेमेंद्र नायक, सत्यरंजन गंगेले और विजय कुर्म। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। आप हमारा प्रसारण मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2 बजे हैं। चित्रपट संगीत में पहले सुनिए घर, इस फिल्म का ये गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ में गुलजार की रचना, संगीत RT बर्मन का है।

चित्रपट संगीत में लीजिए अब सुनिए बॉबी। इस फिल्म का गीत शैलेंद्र सिंह की आवाज में, आनंद बख्शी की रचना, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

चित्रपट के अंत में सुनिए साहिर लुधियानवी की रचना मुकेश की आवाज़ में फिल्म कभी कभी से। संगीत खयाम का है।

0: चित्रपट संगीत अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 2:15 हुए हैं। दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्यकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में 2% से अधिक की बढ़ोतरी। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में कोलंबिया को 4-3 से हराया। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकर्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांभानन मंदिर का दौरा किया। प्रधानमंत्री का पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुन और शास्त्रीय नृत्य के साथ स्वागत किया गया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। संयुक्त बयान में राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा कि प्रांभानन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स, अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रांभानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत ये अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृह मंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वाइडनास भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वाइडनाथ घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता है और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर था। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा सम्पन्न, तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रकृति के बाद आकाशवाणी के साथ की 8वीं कड़ी में पौधरोपण से जुड़े हरियाणा के देवेंद्र सुरापर केंद्रित कार्यक्रम।

0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत आज सुनिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही हैं नीति शुक्ला।
2: नमस्कार, मैं हूँ नीति शुक्ला और प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ में मैं आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने वाली हूँ जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। वैसे तो हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल है, लेकिन जो बात इन्हें खास बनाती है वो है इनका काम। ये जाने जाते हैं ट्री मैन ऑफ हरियाणा के नाम से। आइए, क्या है इनकी जर्नी और क्या है काम, जानते हैं खुद इन्हीं से। स्वागत करते हैं देवेंद्र सूरा जी का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्ते बहन जी, बड़ा धन्यवाद करता हूँ मैं आकाशवाणी का, जिस तरह आकाशवाणी ने पर्यावरण के विषय को उठाया है और जन जन तक ये बात जाए
2: जी।
3: और समाज में बड़ा परिवर्तन है।
2: तो देवेंद्र जी, आप बने ट्री मैन ऑफ हरियाणा, लेकिन इसके पीछे एक लंबा सफर रहा होगा। हम उस सफर की शुरुआत की बात करेंगे कि क्या थी वो पहली घटना जिससे आपको अंदर तक झकझोरा और आपने सोचा कि इस दिशा में काम करना चाहिए और पेड़ लगाने चाहिए।
3: वैसे तो मैं अपनी मातृभूमि से, अपने देश से बड़ा लगाव है और उसके लिए समर्पित भाव से मेरे मन में यही था, मैं अपने देश के प्रति ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को भी शांति मिले और देश को भी लाभ मिले। शुरू में इस तरह हमारा जो बचपन था वो गाँव में या खेतों में ही बीता है।
2: अच्छा।
3: हम प्रकृति से जुड़े हुए थे, लेकिन जब हम शहर में आए सोनीपत में और बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम चंडीगढ़ पुलिस में जब मैं हुआ।
2: अच्छा।
3: तो चंडीगढ़ पुलिस में वहाँ की हरियाली को देखा और मेरे मन में आया जब चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, क्योंकि वहाँ बहुत ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पेड़ या औषधीय पेड़ बड़ी संख्या में लगे हैं। और वहाँ से मेरा मन भी प्रभावित हुआ, जब पेड़ पौधों की वजह से, प्लान की वजह से एक शहर को हरा भरा बनाया जा सकता है और जिसका पूरे देश में नाम है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं।
2: तो ये कब शुरुआत की आपने?
3: ये 2011 में मैं चंडीगढ़ में गया और वहां से बड़ा प्रभावित हुआ और उसके बाद धीरे धीरे विचार बनता गया राष्ट्र के लिए ऐसा क्या कार्य करूं जिससे मेरे मन को ऊर्जा मिले, और 2012 में तो इस तरह कार्य शुरू किया और 2014 में तो बिल्कुल ने मन में धारण कर लिया प्रतिदिन पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना, पर्यावरण के लिए ही कार्य।
2: तो अब तक कितने पेड़ लगा चुके हैं?
3: अब तक 2.5 लाख के लगभग हमने पेड़ ऐसे लगाए हैं जो वृक्षों का रूप ले चुके हैं।
2: अच्छा।
3: जैसे हम परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करते हैं
2: जी,
3: एक छोटे बच्चे की सुरक्षा करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसके खाने का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा, उसके पानी की व्यवस्था, उसको परिवार का एक हिस्सा मानकर उसको इस दृष्टि से गांव-गांव विचार भी बढ़ा और पेड़ भी बढ़े।
2: मेरा अगला सवाल यही था कि एक पौधा लगाना, एक सैपलिंग लगाना या बीज लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन उसकी देखभाल करना बड़ा मुश्किल है और आप हर जगह तो नहीं जा सकते हैं, तो ये कैसे मैनेज करते हैं, कैसे लोगों को जोड़ते हैं?
3: शुरू में जब समाज में गए तो इतना मजबूत विचार नहीं था, क्योंकि गांव-गांव गए, युवाओं को जोड़ा, गांव की चौपालों में गांव वासियों को इकट्ठा किया, तो पर्यावरण के प्रति या पेड़ पौधे प्रति बहुत कम विचार। लेकिन जब धीरे धीरे गए, उनको इनके महत्व को समझाया, तो हमने कहा देखो हमारी मुहिम चलती है बीजारोपण से वृक्षारोपण। अगर जो बच्चा अगर छोटा है बीज से जुड़ जाता है, उसको पता लग गया आम की उठली से पौधा कैसे बनता है, जामुन की उठली से पौधा कैसे बनता है, जब वो उसको बीज से अंकुरित पौधा उगाते हुए खुशी होगी, निश्चित तौर पर उस पौधे से जुड़ेगा और पूरा जीवन उसकी देखभाल करेगा, उसको परिवार का हिस्सा मानेगा और गांव में बड़ी संख्या में सभी को इकट्ठा करके एक मूवमेंट, जन आंदोलन के रूप में कार्य।
2: किस एज ग्रुप का सबसे ज्यादा आपको सहयोग मिला या उत्साह से लगे? वृद्ध लोग थे या युवा थे, किस तरह के लोग थे?
3: वैसे तो पूरे समाज का, जनमानस का सहयोग मिला, लेकिन मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा सहयोग युवाओं का मिला।
2: अच्छा।
3: और उसमें युवाओं में हमारे युवा साथी भी थे और हमारे स्कूल की बेटियां भी, कॉलेज की बेटियां भी थी, जिन्होंने जब हम गांव-गांव गए, गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए, तो एक समय की बात है हम एक डिवाइडर पर पेड़ लगा रहे थे, तो हमारे मन में आया क्यों ना इस बार हम पेड़ बेटियों के नाम पे लगाएंगे।
2: अच्छा।
3: और हमने 100 पीपल के पेड़ 100 बेटियों के नाम पे लगाए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने उस पे लोहे का ट्री गार्ड लगाया।
2: अच्छा।
3: और उस पे हमने, जैसे अक्सर समाज में होता है अगर बेटी के, अगर कहते हैं भाई उसके ऊपर स्नोप लिखा जाता है तो उसमें पिता का नाम ज्यादा आता है हर जगह, लेकिन हमने एक मुहिम चलाई, युवा साथियों से चर्चा की, अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है उसकी माँ का नाम, और उसमें मातृशक्ति ने वहाँ के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई, एक बड़ा विश्वास बना समाज में, और वो आज पूरी सड़क है जो बेटियों ने वृक्षारोपण किया था, आज पूरे बड़े वृक्ष है, ठंडी सड़क है, पीपल वृक्ष है, बेटी रोड है, ऐसे कहते
2: हैं। कहाँ पर है बेटी रोड? कहाँ पर है?
3: सोनीपत में है।
2: सोनीपत में। ये जर्नी आसान तो नहीं रही होगी, क्योंकि आपने सहयोग की बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे इसमें, तो किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा?
3: समाज में अगर हम काम करते हैं, अगर हम बात करें पहले भी देश के लिए लाखों व्यक्तियों ने काम किया, और उसमें जब भी हम कोई इस तरह का समाज के लिए देश के लिए कार्य करते हैं उसमें निश्चित तौर पर हमें संघर्ष और बाधाएं आती हैं, लेकिन जब एक लक्ष्य स्पष्ट हो, एक नीति स्पष्ट हो, इस मातृभूमि के लिए देश के लिए कार्य करना है, तो जब शुरू में हम समाज में वृक्षारोपण अभियान चलाया तो अक्सर लोग कहते थे अब भाई ये काम आपका नहीं है, समाज में मानते थे ये तो जो वृक्षारोपण है पेड़ लगाना वो माली का ही काम है, शुरू में वो कहते थे भाई आप और कार्य करो, आप इस तरफ कहां बढ़ते जा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब हम उस गांव में पेड़ लगाए और उस गांव में अच्छा वातावरण बना और गांव में फल लगे, किसी गांव में फूल लगे, तितलियों की संख्या बढ़ी, मधुमक्खियों की संख्या बढ़ी, तो धीरे धीरे समाज में एक विचार मजबूत होता चला गया, एक जन आंदोलन का रूप लेता चला गया, गांव गांव इस तरह के अभियान चले और तो सैकड़ों गांव इसमें जुड़े।
2: अब ये तो बात हुई लोगों के सहयोग की, लेकिन अब सवाल उठता है वर्क लाइफ बैलेंस का, क्योंकि आप एक सरकारी नौकरी चंडीगढ़ पुलिस में थे, तो कैसे करते थे ये?
3: मैंने खुद पुलिस में रहते हुए देखे, इतने बड़े अनुशासन की सर्विस है और इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, आईपीएस हैं, जो बड़े अच्छे अधिकारी हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है समाज के लिए देश के लिए काम करने की, और ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ पुलिस में हमारे डीजीपी हैं, आईजी हैं, एसएसपी हैं, और उनका पूरा सहयोग बना रहता हमारे ऊपर, जो भी हमारी छुट्टियां होती है लंबी छुट्टी या जब भी जिस तरह के हमें ड्यूटी का हम अपेक्षा करते हैं, ड्यूटी के साथ साथ समाज का इस पर्यावरण का काम कर सके, और निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ पुलिस की जॉब में तो बड़ा आनंद रहा, बड़ा अनुभव रहा, क्योंकि पुलिस की जॉब में एक अनुशासन था और पुलिस के अधिकारियों का फुल सपोर्ट मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से पूरे देश में एक पुलिस की छवि बेहतर हुई, जिस तरह से समाज में पौधारोपण का कार्य किया, लोगों में विश्वास बढ़ा, तो इसी तरह लोगों में समाज में भी विश्वास बढ़ा, अब पुलिस वाला व्यक्ति भी इस तरह समाज में पर्यावरण के लिए, इस धरती माँ के लिए कार्य कर सकता है।
2: आपने नाम भी रोशन किया, क्योंकि आपका नाम अब जीके के सवालों में भी पूछा जाता है कि ट्री मैन ऑफ हरियाणा कौन है, और जवाब में आपका नाम आता है, तो आपके डिपार्टमेंट का रिएक्शन कैसा होता है?
3: मैं कहता हूँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जीव जंतु के लिए, इस पूरे देश के लिए सबसे जो जरूरी है पर्यावरण का विषय है, और ऐसा विषय अगर पूरे समाज में, पूरे देश में अगर चंडीगढ़ पुलिस का नाम होता है तो पूरा गर्व महसूस होता है चंडीगढ़ पूरी पुलिस को, पूरे कर्मचारियों को, सीनियर अधिकारियों को, और पूरा हौसला बढ़ाते।
2: अच्छा, एक चीज हमने सुनी है कि आप अपनी पूरी पूरी सैलरी लगा देते हैं इस अभियान के लिए, और कई बार आपने लोन भी लिया है, तो क्या वो एक अनुभव रहता है? घर में कभी विरोध नहीं हुआ?
3: जब हमें पूरी पूरी सैलरी इस पे लगा देते हैं, और कई बार ऐसा होता है ज्यादा वृक्षारोपण के या नर्सरी खोलने की बात होती है तो उसमें लोन लेना पड़ता है, क्योंकि लोन से एकदम तुरंत पैसा मिल जाता है, तो शुरू में घर में परिवार में तो विरोध हुआ, क्योंकि परिवार में अक्सर क्या होता है ज्यादातर समाज यही अपेक्षा करता परिवार वाले एक हमारी बड़ी गाड़ी हो, एक बंगला हो, और भी सुविधाएं बढ़े, और भी संपत्ति बढ़े, लेकिन मेरा विचार ये था कि हमारा पर्यावरण बढ़े, जब हवा ही सांस लेने योग्य नहीं रहेगी तो मैं मानता हूँ जो ये भौतिक चीजें जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत छोटी हैं, हमारे परिवार में भी, रिश्तेदारी में भी, समाज में भी ऐसा बहुत शुरुआत में विरोध हुआ कि ये इतना आप इस तरह बढ़ते जा रहे हो और समाज जो है एक दिशा जो समाज में चाहते हैं लोग भौतिक संसाधन वो बढ़ाएं, समाज में बड़ी दिक्कत आई, परिवार में बड़ी दिक्कत आई, लेकिन धीरे धीरे जब विचार मजबूत हुआ, उन्होंने पता चला जिस तरह से प्रकृति एक मनुष्य भी एक जीव है, अगर हम पर्यावरण के अनुकूल हम नहीं रहेंगे, अपनी जीवन शैली नहीं रखेंगे, पेड़ नहीं लगाएंगे, जितना व्यक्ति का इस धरती पे महत्व है उतना ही एक मधुमक्खी का, उतना ही एक तितली का, उतना ही मोर का, मैं ये कहता हूँ हर जीव जंतु का उतना महत्व है, तो धीरे धीरे विचार बना और पूरा परिवार आज इस अभियान में बड़ा सहयोग करता है।
2: जब आपने ये शुरू किया था अभियान तो कभी लगा था कि ये इतना बड़ा अभियान बन जाएगा?
3: नहीं, मैं जब गांव से 1995 में आया और गांव में ज्यादा खेतों में जाते थे दादाजी के साथ और स्कूल में कम रुचि थी, लेकिन गांव से निकल के आए और शहर में पढ़े, मैं कहता हूँ स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम बहुत से समाज में जो हमारे सीनियर होते हैं या जागरूक लोग होते हैं उनसे मिले और उनसे सीखने को मिला, और धीरे धीरे मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत में ऐसा कभी सोचा ही नहीं था, गांव जैसे आज कई हजार युवा साथी जुड़े हैं, प्रत्येक गांव में ऐसा ऐसा मतलब ऐसा महसूस होता है ये गांव भी हमारा है, ये गांव भी हमारा, मतलब पूरा समाज अपना परिवार लगता है। तो इस तरह से गांव गांव गए और आज कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन नेक नीति जब व्यक्ति की स्पष्ट होती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। आज महसूस होता है प्रत्येक गाँव अपना परिवार की तरह है और पूरा देश अपना एक मातृभूमि अपना एक परिवार की तरह है। और आज बड़ा गर्व महसूस होता है क्योंकि आज एक विचार है, प्रत्येक गांव से युवा जुड़े हैं, मातृशक्ति जुड़ी है। और मैं बात करता हूं, मेरे को बड़ी प्रेरणा मिलती है जब मैं गांव में जाता हूं क्योंकि लोग इकट्ठा होते हैं और वो सोचते हैं। गांव पर व्यक्तियों का नहीं होता, गांव समस्त जीव जंतुओं का, एक अच्छे तालाब का, सभी से मिलकर गांव बनते हैं।
2: आपने जीव जंतु की बात की तो आजकल हमने ये भी नोटिस किया कि बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं इसी के चलते कि उनके पास प्रॉपर रहने की जगह नहीं है, खाने पीने की नहीं है, तो उनके लिए किस तरह के पेड़ आप लगा रहे हैं कि उन्हें भी प्रॉपर हैबिटेट मिले और खाना मिले?
3: बहुत सी प्रजातियां आज विलुप्त हो रही है और मैं मानता हूँ इसके ऊपर बड़ा गहरा हमने काम किया है। जैसे आपने देखा होगा विश्व में कोरोना जैसी महामारी आई और पूरे संसार को, जिसने प्रत्येक मनुष्य की मन को विचार को हिला दिया। समाज में जैसे लंबे समय से वृक्षारोपण अभियान चला रहे, लेकिन हम ये मानते जब लोगों का कोरोना काल में प्रकृति के प्रति बड़ा झुकाव था और हमने देखा कि हर गांव में पहले वन क्षेत्र होते थे, बनी होती थी और

0: आपने कहा विलुप्त होती प्रजातियां, तो उन बनियों में वे ऐसे आश्रय थे जहाँ पर मुख्य जीव जंतु जैसे नेवला है, तीतर है, गिलहरी है, मोर है, बहुत से सैकड़ों जीव जंतु उसमें रहते थे। वो उनका एक गांव था और उसमें गांव वासियों का एक विचार बना, युवा साथियों से विचार किया, हर गांव में ऑक्सीजन बाग लगाना है। आपने आम के बाग सुने, आपने बेर के बाग सुने, लेकिन जब ऑक्सीजन शब्द का प्रयोग आया, गांव वासियों का झुकाव बना और हजारों की संख्या में गांव वासी माताएं बहनें युवा साथी एक बढ़ चढ़ कर भाग लिया और गांव गांव इस तरह से 10 एकड़ में 20 एकड़ में वृक्षारोपण अभियान चले और हरियाणा के 27 गांव में इस तरह के अभियान चले और एक जन आंदोलन का रूप लिया। गांव गांव ऐसा प्रयास है हर गांव में इस तरह के ऑक्सीजन बाग लगाए जाए।
1: तो अब तक कितने गांव में आप लगा चुके हैं ऑक्सीजन बाग?
0: अब तक 27 गांव में ऑक्सीजन बाग लगाए हैं और उसके अतिरिक्त जैसे बहुत से गांव में जैसे शमशान भूमि है या किसी तालाब के पास है या स्कूल के पास है, मतलब या स्टेडियम है, मतलब ऐसे पेड़ लगाए जाते हैं ऑक्सीजन बाग में जो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं। आजकल प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, लेकिन उससे पहले हमारे पत्तों की पतल प्रयोग होती थी, उसके लिए ढाक के पेड़ का प्रयोग होता था। हम ढाक के पेड़ को बढ़ा रहे हैं, ऐसे पेड़ को बढ़ा रहे हैं जिससे या तो जीव जंतुओं को आश्रय मिलता है या ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, मतलब धीरे धीरे उन औषधीय वनस्पतियों को भी बढ़ाया जा रहा है।
1: तो आपका फेवरेट पेड़ कौन सा बन गया है, क्योंकि जिसकी ज्यादा बहुत ज्यादा देखरेख ना करनी पड़ी हो, बस लगा दिया और वो अपने आप फल जाता हो?
0: वैसे तो सभी वनस्पतियों का इस धरती पे महत्व है, लेकिन मेरा झुकाव बरगद के पेड़ पे, राष्ट्रीय पेड़ है और एक ही पेड़ मैं कहता हूँ इसमें हजारों जीव जंतुओं का आश्रय बनता है।
1: अगर एक आम इंसान भी हमारी बातचीत सुन के उसे भी लगे कि हमें भी पेड़ लगाना चाहिए, तो वो क्या करे सबसे पहले?
0: अगर आम इंसान भी आकाशवाणी की बात को सुन के और जन जन का विचार बने हमारे को भी पेड़ लगाना है, तो सबसे बड़ी बात है उसका विचार बन गया, पेड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और उसको सबसे पहले अपने ऐसी आदत डाले जैसे घरों में छोटी छोटी नर्सरियां बनाए, जैसे अभी हम आम खाते हैं, आम की गुठली से अपने गमलों में पौधा तैयार करे या जामुन की गुठली से पौधा तैयार करे, नीम से पौधा, जो भी घरों में फल प्रयोग करते हैं उसे पौधे तैयार करे और एक छोटी ही घर में ही नर्सरी बनाए। जब उसके पौधे 2-3 फीट के हो जाए तो कहीं भी नजदीक कोई पार्क है या कहीं उसके खेत में है, जहां भी संभव हो उन पेड़ों को लगाए और परिवार का हिस्सा माने और हो सके तो अपने जो भी घर में सदस्य है उनके जन्मदिन पर ऐसा प्रयास करे तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन आएगा।
1: अच्छा।
0: पार्कों में वृक्षारोपण कर सकते हैं, अपने घरों में, और नहीं तो ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा ऑक्सीजन देने वाले इंडोर प्लांट लगा सकते हैं जन्मदिन पर, जैसे एरिका पाम है, स्नेक प्लांट है, पीस लिली है, या घर में छोटे पौधे एलोवेरा है, तुलसी है, अश्वगंधा है, ऐसे पौधे हम घरों में जन्मदिन पर लगा सकते हैं। और गांव वासियों के लिए कहता हूँ, जो अपने गांव में गोचर भूमि होती है, पंचायत भूमि होती है, उसमें खुले तौर पर बड़ी बड़ी भूमियां होती हैं और खासकर NCR के आसपास में बात करूं तो बहुत ज्यादा संख्या में हर गांव में भूमि है और पंचायत या गोचरण भूमि में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जा सकता है।
1: अवेयरनेस का कितना महत्व है इसमें और सोशल मीडिया के जरिए इसे किस तरह से बढ़ावा दे सकते हैं?
0: अवेयरनेस का ये सबसे बड़ा महत्व मैं अपना अनुभव साझा करता हूं आपके साथ, क्योंकि 10-12 साल पहले जब हम वृक्षारोपण करते थे तो उस समय इतनी जागरूकता नहीं थी। हम गांव-गांव जाते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे, अगर 10 लोगों को इकट्ठा करना था उसके लिए भी कई बार प्रयास करने पड़ते थे। लेकिन मैं कहता हूँ सबसे बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे लोगों का विचार बढ़ा और आज सम्मान से महसूस करते हैं पेड़ लगाना बड़ा अच्छा कार्य है। और आज जब भी ऑक्सीजन बाग लगाया जाता है किसी गांव में तो वहां पर उस गांव के हजारों व्यक्ति, माताएं बहने बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, भंडारा लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। एक जैसे घर में त्योहार होता है या शादी वगैरह होती है, इस तरह गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ विचार के माध्यम से, ये एक संख्या तौर पर वृक्षारोपण हुआ है, लेकिन विचार के माध्यम से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया और बड़ा जन आंदोलन का रूप।
1: नेटिव प्लांट का कितना महत्व है, अगर हम पेड़ लगाने के लिए जाएं तो कौन से ऐसे नेटिव प्लांट हैं आप उनका सुझाव देंगे कि ये लगाने चाहिए?
0: जहां हम रहते हैं वहां के जो स्थानीय प्रजातियां पेड़ पौधों की वो ज्यादा लगाएं। जैसे अगर अपने NCR की हरियाणा की बात या दिल्ली की बात करें तो इसमें जैसे एक बेरी का पेड़ है या नीम का पेड़ है या जाटी का पेड़ है, मतलब जो बड़ा प्राचीन पेड़ है, तो ऐसे बरगद है, पीपल है, मतलब उन पेड़ों को बढ़ाएं जो आसानी से उस भूमि में चल सके, उसके जलवायु के अनुकूल उनका पालन पोषण कम करना पड़े और विशाल रूप ले सके, वो भी खुश रहें और ऑक्सीजन भी खुश होके दे सके।
1: पॉलिथिन से किस तरह का नुकसान हो रहा है हमारे पर्यावरण को?
0: आज से अगर हम 30 साल पहले की बात करते हैं, किसी गांव में जाते हैं, गांव में कोई भी पॉलिथिन नहीं थी। अक्सर हमारे बुजुर्ग हैं वो कोई भी दाल चीनी या सब्जी लेनी होती थी वो अक्सर पुराने कपड़े थैलों का प्रयोग करते थे और मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ, साथ में रखो थैलो।

0: क्यों करे हम राष्ट्र को मेला,
1: क्या बात है।
0: तो देखो ये पर्सनालिटी के ऊपर है, व्यक्ति दो तरह की पर्सनालिटी है, एक इंटरनल पर्सनालिटी, एक एक्सटर्नल। वो हमारे ऊपर हम कैसा जीवन जीते हैं। मैं खुले दिल से थैले का प्रयोग करता हूँ, कोई भी सामान लेता हूँ इसमें डालता हूँ। प्रतिदिन एक घर में कम से कम आप लगाओ 5 पॉलीथिन आती है, और महीने की 150 हुई तो साल की 1000 पॉलीथिन हो गई। और धीरे धीरे अगर इसको हम कम करें, मैं जोर दूंगा कम से कम पॉलीथिन का प्रयोग करें, तो धीरे धीरे जब पॉलीथिन कम होगी, गाँव अगर गंदा है तो पॉलीथिन की वजह से गंदा है, शहर अगर गंदे हैं तो पॉलीथिन की वजह से गंदे हैं। और कहीं ना कहीं हम जो ये प्रदूषण के गुलामी महसूस करते हैं, तो मेरा सबसे बड़ा निवेदन है पॉलीथिन को जितना कम से कम प्रयोग हो, अपना जीवन में पॉलीथिन का कम प्रयोग करें, दोबारा से कपड़े के थैलों का प्रयोग करें, जूट के थैलों का प्रयोग करें, और कहीं ना कहीं इस धरती माता को कुछ दे सकते हैं तो पॉलीथिन को कम करके दे सकते।
1: तो अगर कोई पेड़ नहीं भी लगा पा रहा है और उसकी सेवा नहीं कर रहा है, तो कम से कम वो पॉल्यूशन जो करने वाली चीजें वो कम इस्तेमाल करे, तो काफी बदलाव आ सकता है।
0: सबसे बड़ा मैं परिवर्तन मानता हूँ व्यक्ति अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करे। वो जीवन शैली में व्यक्ति अगर 4 जोड़ी कपड़े डालता है, तो निश्चित तौर पर उस कपड़े को बनने के लिए कितना पानी वेस्ट होता है, भारी मात्रा में मतलब पानी की वेस्टेज होती है। इसलिए अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जीने आप प्रयास करें। जैसे समय हो आपके पास तो पैदल चले या साइकिल का प्रयोग करें, कम से कम कपड़ों का प्रयोग करें, साधारण जीवन शैली अपनाए, मतलब पर्यावरण के अनुकूल जीवन।
1: अगर हर नागरिक एक पेड़ लगाए, ज्यादा नहीं सिर्फ एक पेड़ अपने जीवन में लगाए, तो कैसा बदलाव आ सकता है।
0: पूरे विश्व में बात करें तो ऐसे देश भी है जिसमें 8-9 हजार प्रति व्यक्ति पेड़ है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो 28 पेड़ प्रति व्यक्ति है। लेकिन समाज की बात करें, लोगों में बहुत कम जागरूकता है पेड़ लगाना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति का यही एक जागरूकता उसके अंदर आ गई है कि मैं एक पेड़ लगाना, वो एक पेड़ से नहीं रुकेगा। एक बार वो पेड़ से जुड़ गया, उसने उस पेड़ को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया, तो निश्चित तौर पर हर साल वो किसी न किसी उत्सव जन्मदिन पर पेड़ लगाएगा। और सरकारें भी ऐसा करती हैं। हरियाणा में स्कीम चली है जैसे किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिन किसानों के खेतों में पेड़ है, जैसे पुराने पेड़ है, पीपल है, जाटी है, नीम है, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जिनके बड़े पेड़ है या गांव में पंचायत को मिलती है, या जिसके खेत में है जगह में उसको मिलती है। हरियाणा मात्र ऐसा प्रदेश है जहां पेड़ों को भी पेंशन मिलती है।
1: तो इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा पेड़ लगाने के लिए। और अगर हर बच्चे के जन्म पे एक पेड़ लगा दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है।
0: हाँ देखो, अगर परिवार में 4 सदस्य है तो 4 पेड़ लगाएंगे, धीरे धीरे समाज में एक जागरूकता बढ़ती जाएगी। और जन्मदिन ही ऐसा एक उत्सव है जो हर वर्ष आता है, हर व्यक्ति का आता है, और जन्मदिन पर हर व्यक्ति चाहता है वो कुछ ऐसा करे जो इस धरती पर आया है उसका मन भी खुश हो, वो इस प्रकृति को भी कुछ दे सके। और मैं कहता हूँ अगर आप वाली बात है, अगर जन्मदिन पर व्यक्ति में जागरूकता आती हो, पेड़ लगाता, निश्चित तौर पर इस देश में जो पर्यावरण की समस्या है, पेड़ों की समस्या है, उसका हल एक जन्मदिन पर पौधारोपण से ही पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप बन सकता है।
1: आपने कोई नर्सरी की भी शुरुआत की है क्या, जहाँ से आप बीज या सैपलिंग्स लोगों को देते हैं?
0: हाँ, ऐसा एक जनता नर्सरी बनाई है, उसका नाम भी इसलिए रखा जनता नर्सरी क्योंकि जनता ही नर्सरी है। उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं, और उसमें ऐसे पेड़ ज्यादा दिए जाते हैं जैसे बरगद, पीपल, नीम या फलदार जामुन, अमरूद, बेलपत्र, मतलब ऐसे वृक्ष दिए जाते हैं जो सामान्य तौर पर समाज में जागरूकता भी बढ़े और पर्यावरण के लिए भी अच्छे रहे।
1: इतने सालों में कभी आपको ये नहीं हुआ कि भाई बस बहुत हो गया, मैंने बहुत पेड़ लगा लिए, बाकी लोग भी कुछ करें, ऐसा विचार कभी आया मन में?
0: विचार ऐसा आता है कि परमात्मा मेरे को और ज्यादा पहले से ही जागरूक करता, मैं जो ये पेड़ लगाने का कार्य है, ये धरती का जो प्रकृति का कार्य है, ये मैं और पहले से शुरू कर पाता। अभी मन कहता है ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, और अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
1: अब कुछ सवाल हमने रैपिड फायर के लिए आपके लिए रखे हैं, तो आपका पसंदीदा पेड़ कौन सा है?
0: मेरा पसंदीदा पेड़ बरगद का पेड़ है, राष्ट्रीय वृक्ष।
1: पर्यावरण को सेफ रखने के लिए कोई एक आदत जो हर भारतीय को अपनानी चाहिए?
0: पर्यावरण के अनुकूल जीवन जीना चाहिए।
1: और अगले 10 सालों में अपनी इस मुहिम को आप कहाँ देखने का सपना देखते हैं?
0: अगले 10 सालों में यही सपना देखते हैं कि जनमानस में ये मुहिम बढ़े और हर गांव में दोबारा से जैसे पहले गांव थे, तितलियां, मधुमक्खियां, और दोबारा से पक्षियां उड़े और गांव जैसे पहले थे वैसे गांव बने और वनस्पतियां बढ़े, पक्षियों की जो लुप्त होती प्रजाति जैसे गिद्ध है वो दोबारा से लौटे, उनका घर है।
1: एक सवाल मेरे जहन में ये भी आ रहा था कि आप किस तरह से ये काउंट रखते हैं कि इतने पेड़ लगाए, जैसे शुरू में आपने कहा कि लगभग 2.5 लाख पेड़ आप लगा चुके, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप जितने सैपलिंग्स लगाएं वो वृक्ष में

0: जब हम जुड़ाव एक बच्चे जैसे बच्चा परिवार में होता है, जब पेड़ को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं और उसकी देख रेख करते हैं, उसमें कामयाबी निश्चित तौर पर 100% मिलती है।
1: किन लोगों से आपको प्रेरणा मिली इस काम को करने की?
0: वैसे तो सबसे बड़ी प्रेरणा मनुष्य भी प्रकृति का हिस्सा है और इस धरती माँ से बड़ी प्रेरणा मिलती है, लेकिन मैं बात करूँ पूरे विश्व में 1730 में माँ अमृता देवी ने पेड़ों के लिए बलिदान दिया, उनकी प्रेरणा से उनकी तीनों बेटियों ने बलिदान दिया और उनके बलिदान से उस आसपास के गांव के 363 व्यक्तियों ने पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बलिदान दिया। मुझे याद आती है माता सालूमरदा थी मक्का, कर्नाटक से हैं, जो वो अभी उनका दाह संस्कार हुआ 114 साल की हुई थी। मैं गया था वहां उनसे मिलने के लिए और उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने बरगद के पेड़ों को अपना संतान के रूप में माना और कोयले की खान में वो काम करती थी, उनका एक झोपड़ी में रहती थी। मैं देखा उनका जो कार्य था इस प्रकृति के माँ के लिए, पेड़ों को बच्चों के रूप में मान के कार्य किया, मतलब ऐसे लोगों से मेरे को बड़े प्रेरणा मिलती है।
1: हमें आपसे ये बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और अगर हमारी ये बातचीत सुन के किसी को भी ये लगा हो कि उनको भी अपने जीवन में पेड़ लगाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये जो हमारी बातचीत है बहुत सार्थक रहेगी।
0: मेरे को बड़ी ऊर्जा मिली, ये जो आकाशवाणी के माध्यम से ये विचार आकाश में गूंजेगा और जनमानस में इसका विस्तार होगा, तो जनमानस में जब कोई विचार बढ़ता तो समाज में पूरे देश में एक बड़ा परिवर्तन आता है। तो मैं तो आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, इस विषय को उठाया है जो सबसे जरूरी विषय है, मनुष्य ही नहीं प्रत्येक जीव जंतु के लिए जरूरी है। तो मैं आकाशवाणी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ।
1: और भारत के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: भारत के नागरिक को यही संदेश देना चाहूंगा, अगर वो अपने आप को भारत का नागरिक मानते ही हैं, तो सबसे बड़ा है कि वो अपने जीवन को पर्यावरण के अनुकूल जिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो साल में एक बार अपने जन्मदिन पर वृक्षारोपण अभियान चलाएं, अपने परिवार को जोड़ें और पेड़ों को भी अपने परिवार का हिस्सा माने।
1: तो आपने इतनी अच्छी बातचीत की भाई, मुझे तो बहुत ऐसा लग रहा है कि मुझे भी पेड़ लगाना चाहिए और मुझे लग रहा है हमारी बातचीत सुन करके लोगों को भी लगेगा। अगर ये कुछ लोगों के मन में भी ये बात आ गई ना, तो हमारी आज की ये बातचीत बहुत सार्थक रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच।
0: धन्यवाद बहन जी।
1: तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे लगता है कि अब आप भी एक पेड़ तो जीवन में जरूर लगाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नीति शुक्ला को नमस्कार।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण के लिए विशेष योगदान देने वाले देवेंद्र सूरा के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी नीति शुक्ला। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इस कार्यक्रम की 8वीं कड़ी में पौधरोपण से जुड़े हरियाणा के देवेंद्र सुरा पर केंद्रित वार्ता अभी आप सुन रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है।
5: कुछ बातें बड़ी दूर से सुनाई देती हैं।
6: फोनिंग फरमाइश। नमस्कार सर, रोहतक हरियाणा से महेंद्र शाह रेडियो लिस्टन बोल रहा हूँ सर।
7: बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तो फरमाए हैं।
5: कुछ आवाजें गीतों के संग खुल मिल जाती हैं।
8: गीत मेरे होठों को गया कोई।
5: कभी कोई किस्सा याद आता है।
9: यादें।
5: कभी अपने बारे में बहुत कुछ कहने को मन करता है।
10: मुझे कुछ कहना है,
11: मुझे भी कुछ कहना है।
5: श्रोताओं की बातों और उनकी पसंद के फिल्मी गीतों का अनूठा संगम है फोन इन फरमाइश। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल से हर रविवार सुबह 11:05 पर।
12: सुनिए।

आकाशवाणी के चुनिंदा कार्यक्रम अब उपलब्ध हैं यूट्यूब पर। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आकाशवाणी रायपुर और सुनिए आकाशवाणी रायपुर के चुनिंदा कार्यक्रम। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कार्यक्रमों को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें। तो यूट्यूब पर उपलब्ध है चुनिंदा कार्यक्रमों के साथ आकाशवाणी रायपुर।

0: कैसे वर्षा, प्रतियोगी परीक्षा के तैयारी कर थसकाते हैं?
1: नहीं सुमित, ज्ञान बढ़ाए बर पढ़ते हो फिर पढ़ के भुला जाते हो।
0: अरे तो सुने करना,
1: कैसे बात करत हस, किताब हथोड़ी ना बोली मुर करा।
0: मैं किताब की बात नहीं करत हूँ वर्षा।
1: ता काखर बात करत हस?
0: मैं बात करत हूँ युवाणी के, जेमा हर मंगलवार को होते तोर ज्ञान मा वृद्धि।
1: वो कैसे सुमित?
0: वैसे वर्षा, युवाणी मा तय सुनबे क्रम सवाल जवाब और संग मा माटी के गीत, हमारे गांव, आप मन के चिट्ठी और अपन गोठ मना नवा नवा विषय के बारे में जानकारी मिलते। और एक असन कई ठन कार्यक्रम हवा जिला सुने बर तैं बैठबे ना तो कब तोर बेला ढलंग जही ना पता नहीं चले। और मनोरंजन के तो का कहना भाई।
1: वाह, एक के कार्यक्रम में इतना कुछ, तब बेरा लगा लो बताना सुमित।
0: बेरा हवा संझा कून 5:10 ले जिन शुरू होते ना वर्षा, तेना 6 तक चलते, जेमा तह मंगलवार, गुरुवार और शनिचर के छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम सुनबे और बाकी दिन हिंदी में।
1: तब तो सुने ला पढ़ी
2: एक संग युवाणी।

मीडियम वेव 305.8 मीटर यानी 981 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 102.8 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा संपन्न होती है। इसी मीटर पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। ब्रिक्स महिला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। इससे पहले महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर तथा सचिव अनिल मलिक ने पूर्ण सत्र में भाग लिया। केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन भी आज शाम सम्मेलन में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा की। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की और राहत तथा पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। इस बीच मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2-3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार भारी बारिश हो रही है। आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज के साथ बादल बरसने, तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। प्रभास मंडल को एक नाबालिग लड़की के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईरान ने होर्मुज़गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलीम वायुसेना अड्डा शामिल है। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, along with Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of a gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex where Prime Minister Modi offered prayers at the main Shiva temple. In a joint statement, President Prabowo said, Prabhanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex and said culture continues to serve as a bridge connecting the two nations. Addressing the Prambanan temple, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
1: यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं, ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है.
2: Earlier, India and Indonesia strongly condemned terrorism in all its forms and called for a decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with the international law. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit where he will participate in the third India-Australia Annual Summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. The BRICS Women's Ministerial Meeting has commenced in Kochi. The joint statement will be adopted during the main session. Following this, the ministers representing the delegates at the meeting will visit an exhibition organized in connection with the BRICS Summit. Exhibitions highlighting India's achievements in women-led development across various sectors are being held near the venue. Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides and assured them of all possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Kerala Chief Minister V.D. Satishan. Mr. Satishan said that Mr. Shah inquired about the Wayanad disaster and assured the centre's full support for relief and rehabilitation efforts. US President Donald Trump has said that the memorandum of understanding signed with Iran to end the conflict is over, adding that he didn't want to engage with Tehran. Mr. Trump's statement came during the press conference at NATO summit in the Turkish capital Ankara, following the US and Iran traded strikes after three tankers were hit by projectiles in the Strait of Hormuz. Meanwhile, Iran has not directly claimed responsibility. Earlier, Iran has launched retaliatory strikes on U.S. military installations following the U.S. attacks on its Hormuzgan province and the port city of Mashhad. According to Iranian media, the Islamic Revolutionary Guard Corps, Navy and Aerospace Forces carried out a joint missile and drone operation targeting 85 U.S. military facilities. The U.S. has carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. According to U.S. Central Command, the strikes targeted Iranian air defense systems, command and control centers, coastal radar sites, anti-ship missile systems, and more than 60 Islamic Revolutionary Guard Corps fast boats in and around the Strait of Hormuz. The IMD has issued an orange colour warning for heavy rainfall and thunderstorm over central and eastern parts of the country. The weather department also forecast moderate to heavy rainfall over Jammu and Kashmir, Ladakh, Haryana, Chandigarh and Himachal Pradesh. In football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:11 हुए हैं। आप सुन रहे हैं अपने उस कार्यक्रम को जिस कार्यक्रम का नाम है मन भावन। और मन को आपके इसलिए भी और ज़्यादा भाता है ना, क्योंकि सिर्फ इस कार्यक्रम में हम ही नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि दो तरफा जुड़ाव इस कार्यक्रम के साथ है, आपका भी और हमारा भी। आपका जुड़ाव इस तरह कि आप अपनी पसंद के गीत हम तक लिखकर भेजते हैं, और हमारा जुड़ाव इस तरह कि आपके नामों के साथ हम उन गीतों को आप तक और अपने सभी श्रोताओं तक पहुँचाते हैं। जी हाँ, आज के मन भावन कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ नईम अख्तर। आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम गोल्ड। और मन भावन कार्यक्रम के लिए आप अपनी फरमाइश ईमेल कर सकते हैं हमें। ईमेल करने का तरीका आप जानते हैं क्या होता है। ईमेल आईडी हम आपको बता देते हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com। स्पेल आउट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए, fmgoldairdelhi@gmail.com। तो आपकी पसंद के गीत हम तक पहुँचे और हम उन्हें आप तक पहुँचाएं, इस बात का इंतज़ार आपको भी है और हमें भी है। तो क्यों ना आगाज़ कर दिया जाए आज के कार्यक्रम का। और आज के कार्यक्रम का भी आगाज़ करने के लिए, क्योंकि फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम है, वो भी आपकी फरमाइश के गीतों का, तो एक भी गीत हम अपनी पसंद का क्यों सुनवाएं, हम सारे ही गीत आपकी पसंद के सुनवाएंगे। तो ये पहला जो हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, फरमाइश आई है, वो हमें लिखकर भेजी है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा ने। और इन्होंने सुनना चाहा है अपनी पसंद का फिल्म दाग का ये गीत, 1973 की फिल्म दाग।

आपका साथ कैसे गवारा नहीं होगा, आप ही के लिए तो हमारा कार्यक्रम है मन भवन, और आप ही के लिए हमारी पेशकश भी है। मन भवन कार्यक्रम में अपनी पसंद के गीत हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें भेज सकते हैं ईमेल इस ईमेल आईडी पर fmgoldairdelhi@gmail.com यानी fmgoldairdelhi@gmail.com। तो आपकी पसंद की गीत की फरमाइश का हम कर रहे हैं इंतज़ार। और अभी जो 1957 की फिल्म पेइंग गेस्ट का गीत आपने सुना, माना जनाब ने पुकारा नहीं, किशोर कुमार की आवाज़ में गाए गए इस गीत की फरमाइश हमें भेजी थी नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। क्या बात है, आप सबके नाम तो हमें ये बता रहे हैं कि आप गुजरात से हैं और आपका मैसेज आया हमें मध्य प्रदेश से। कोई बात नहीं, पूरा भारत ही हमारा है, हम चाहे जहाँ रह सकते हैं किसी भी प्रदेश से रिश्ता रखते हुए। खैर, ये तो आपकी पसंद का गीत हुआ जो आपके साथ साथ हम सब ने सुना। और अगला गीत जो हम सुनवाने जा रहे हैं वो उसकी फरमाइश हम तक पहुंची है सनावद से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना ने। इन सभी ने अपनी पसंद का गीत तो भेजा है लेकिन साथ ही सब कुछ लिख डाला है 1971 की फिल्म मेरा नाम मेरा देश मेरा गाँव मेरा देश। गायक लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी और कलाकार धर्मेंद्र और आशा पारी। क्या बात है दोस्त, इस फिल्म के दीवाने हैं आप या इस गीत की फरमाइश आपने आज के मौसम को देखते हुए करी है। बारिश हो रही है ना, लेकिन हालांकि अभी सिर्फ बारिश है, मानसून चल रहा है, सावन नहीं आया है, लेकिन आपकी फरमाइश को मद्देनजर रखते हुए हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये गीत। आप सावन का न सही बारिशों का आनंद तो ले ही सकते हैं इस गीत के माध्यम से। और इसकी मधुर धुन और गायकी, वाह वाह क्या बात है।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम मन भावन। मन भावन लेकर आपके लिए हाजिर हूँ आज मैं नईम अख्तर। आप अपनी पसंद के गीत हम तक पहुंचा रहे हैं जिस ईमेल आईडी पर, वो ईमेल आईडी है fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। और आपकी पसंद के गीत मैं आप तक पहुंचा रही हूं, मैं आपके साथ ही नईम अख्तर। अभी जो गीत हमने सुना, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास आई थी स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया। क्या बात है, कितना खूबसूरत नाम है एंजल आपका, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया की। आपने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा। और उससे पहले जो गीत हमने आपको सुनवाया था, कुछ कहता है ये सावन, मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गीत, उसकी फरमाइश हमारे पास एक और श्रोता की भी आई है। ये हैं उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही महराज जहां, इन्होंने हमें आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से मैसेज भेजा था। तो दोस्त आपने भी अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा। और अभी जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो फिल्म खेल खेल में से लिया है हमने। इस गीत की फरमाइश भेजी है भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार ने। और लिखते हैं साथ में कि हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, आनंद उठा रहे हैं, लेकिन ना तो फरमाइश का गीत हमारी बजता है और ना हमारा मैसेज ही शामिल होता है। एक नगमा सुनने की काफ़ी दिनों से हमारी इच्छा है, क्या आप पूरी करेंगे? जी दोस्त, आपकी फरमाइश हम तक पहुंची, इत्तफाक से हमारे पास आ भी गई, हमने उसको ओपन भी कर लिया और हमारे पास वो गीत निकल भी आया। तो चलिए हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवा रहे हैं। और अगर बहुत दिनों से ये गीत सुनने की आपकी इच्छा थी तो आज अपनी इच्छा पूरी कीजिए एफएम गोल्ड के साथ।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 3:47:58 हुए हैं और कार्यक्रम मन भावन के आखिरी 10-12 मिनट बचे हुए हैं हमारे पास, लेकिन आपकी पसंद के जो गीत हम तक पहुंच रहे हैं उन्हें हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारे कुछ श्रोता ऐसे ज़रूर हैं जो हमसे नाराज़ हैं इसलिए कि हम उनका नाम शामिल नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, एक बात बताओ, आप मुझे, आप अपना नाम तो शामिल करवाना चाहते हैं लेकिन अपनी पसंद का गीत लिख कर नहीं भेजते, तो कैसे आपकी पसंद का गीत भी पहुंचाएं आप तक और आपका नाम भी शामिल करें? तो नाराज़गी छोड़ दीजिए, और जो उल्टे सीधे इल्ज़ाम आप हम पर लगाते हैं कि भाई अगर अपने जान पहचान वालों के नाम आपने शामिल कर लिए हो तो हमारा संदेश भी पढ़ दीजिए, बिल्कुल आप भी हमारे जान पहचान वाले बन जाएंगे, अपने नाम के साथ गीत के बोल ज़रूर लिख करके भेजिए। खैर, अभी जो गीत हमने आपको सुनवाया था फिल्म प्यार किए जा फिल्म का, फूल बन जाऊंगा शर्त ये है मगर, इस गीत को सुनने की फरमाइश हमारे पास भेजी थी उमेश कुमार, दिनेश कुमार, अनुज कुमार और सोनित कुमार ने खयाला से। और अगले जो गीत को हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं, उससे पहले बता दें कि एक हमारे पास बड़ी अच्छी सी फरमाइश आई है गौरी शंकर वर्मा की नांगलोई से। उन्होंने मान गए उस्ताद फिल्म का गीत सुनने की फरमाइश भेजी थी, एक छतरी और हम हैं तो अब क्या हो, कुछ तो करो भाई, गीत वाकई आज के मौसम को बहुत सूट कर रहा है, लेकिन दोस्त हम आपसे माफी चाहेंगे क्योंकि हमारे पास ये गीत इस वक्त अवेलेबल नहीं है। खैर, हमारे वो सभी श्रोता जो अभी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं और उनके पास हमारा ईमेल आईडी नहीं है, उनको हम बता दें कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर fmgoldairdelhi@gmail.com fmgoldairdelhi@gmail.com। तो आपकी पसंद की गीत का की ईमेल का इंतज़ार हम कर रहे हैं और आपकी भी इंतज़ार को यहीं विराम लगाते हुए बताते हैं कि हमारे पास जो अगला सॉन्ग आपको सुनाने के लिए है वो है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशन देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। इन सभी ने सुनना चाहा है ये गीत।

इस गीत की फरमाइश हम तक पहुंची थी फरीदाबाद हरियाणा से स्वाति, वर्तिका और निशिकी। लगता है ये तीनों आपस में दोस्त हैं, तभी इन्होंने ये गीत सुनना चाहा कि ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए अच्छी बात है, ये दोस्ती यूं ही बरकरार रहे, ना सिर्फ आपकी बल्कि आपकी और हमारी भी। जी हाँ, FM गोल्ड और हमारे श्रोताओं की भी। इस दोस्ती को हम चाहेंगे हमेशा सलामत रहे। इसी दुआ के साथ आज के मन भावन कार्यक्रम को यहीं खत्म करने की इजाजत चाहती हूँ। मैं नईम अख्तर, आप सुनते रहिए 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। अब से कुछ ही पलों में होंगे आपके लिए समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांभनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना और भारत इंडोनेशिया सहयोग के तहत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। प्रांभनन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति प्रोबोवो ने कहा कि प्रांभनन भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने सभ्यतागत बंधन का प्रतीक है। उन्होंने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और एक यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। तीन देशों के दौरे की यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोच्चि में शुरू हो गया। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज बारिश से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जल भराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा की। इस बीच केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की और राहत तथा पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के अगले दो तीन दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि संघर्ष समाप्त करने के लिए ईरान के साथ हुआ समझौता अब प्रभावी नहीं है। उन्होंने कहा कि फिलहाल उनकी ईरान से बातचीत करने की कोई इच्छा नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित संवाददाता सम्मेलन में ये बात कही। अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi today visited the UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta along with the Indonesian President Prabowo Subianto. The Prime Minister was accorded a traditional welcome with the resonant notes of a gamelan ensemble and a classical Yogyakarta dance performance reflecting Indonesia's rich cultural heritage. The two leaders toured the 9th century temple complex where Prime Minister Modi offered prayers at the Shiva Temple. In a joint statement, President Prabowo said that Prambanan stands as a symbol of the centuries-old civilizational bond between India and Indonesia. He thanked India for its support towards the conservation and restoration of the temple complex and said culture continues to serve as a bridge connecting the two nations. Addressing at the Prambanan Temple, Prime Minister Modi described the visit as a deeply spiritual and memorable experience.
1: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत के सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
2: Earlier, India and Indonesia strongly condemned terrorism in all its forms and called for a decisive, coordinated and international efforts to combat the threat in accordance with the international law. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit where he will participate in the third India-Australia annual summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. Union Home Minister Amit Shah today spoke to the chief ministers of several states affected by heavy rainfall, flood-like situation and landslides and assured them of all the possible assistance from the centre. Mr. Shah spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis, Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel and Kerala Chief Minister V.D. Satheeshan. Mr. Satheeshan said that Mr. Shah inquired about the Wayanad disaster and assured the centre's full support for relief and rehabilitation.

0: 4:10 दशमलव 1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड और आपके साथ मैं हूँ नईम अख्तर, लेकर आपके लिए बरसात के इस बहारों वाले मौसम में कुछ खूबसूरत नगमे लेकर।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
2: क्या?
1: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
1: गलियों पे निखार है?
2: हाँ है।
1: तो तुमको मुझसे प्यार है?
2: ना ना।

0: प्यार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर अपनी पसंद का फिल्म संगीत। जी हाँ, फिल्म संगीत लेकर आपके साथ मैं हूँ और वक्त हुआ है शाम के 4:16। सुनते हैं एक और गीत आप ही की पसंद के मुताबिक।

0: युद्धक वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इसके लिए निर्धारित विषय हैं मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 7, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग तथा संचार इंजीनियरिंग के लिए 2 और 5 तथा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 2 रिक्तियां उपलब्ध हैं। वेबसाइट का पता है drdo.gov.in। पत्राचार के लिए ईमेल का पता भी नोट कीजिए pmhr.cvrde@gov.in। किसी भी अन्य संबंधित पूछताछ के लिए सोमवार से शुक्रवार तक के कार्य दिवसों में सवेरे 9:30 से शाम 5 बजे तक इस फोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 0442636213। नागर विमानन मंत्रालय में उप महानिदेशक के 4 रिक्त पद मौजूद हैं। इन्हें भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। योग्यता तथा अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी के लिए नागर विमानन मंत्रालय की वेबसाइट आप देख सकते हैं www.civilaviation.gov.in। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के जरिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम उन उम्मीदवारों के लिए है जो भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 में शामिल होने के योग्य पाए गए हैं। ये परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है जिसका पता है www.upsc.gov.in। सभी योग्य उम्मीदवारों को ये सूचित किया जाता है कि उन्हें आयोग की वेबसाइट पर तमाम आवश्यक जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बज रहे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी तन्वी खुराना। तन्वी, आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार करिश्मा, हेलो एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू परिक्रमा ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज। वेल, करिश्मा हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस यू टू आवर प्रोग्राम एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, आवर डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। All these over the next just 30 minutes. Let's begin our program with the news headlines first. Prime Minister Narendra Modi visits UNESCO World Heritage Site of Prambanan Temple in Yogyakarta, says India's participation in temples conservation reflects shared cultural legacy of the two countries.
1: Pradhan Mantri Modi ki Indonesia yatra sampa

0: तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना।
1: टुडे ब्रिक्स विमेन मिनिस्टीरियल मीटिंग बिगिंस इन कोची टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन विमेन्स एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
1: IMD forecasts heavy rainfall and thunderstorms over central and eastern parts of the country.
0: अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत

0: and India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And today we are going to talk about Math 2.0 Day and India Handmade Platform. Today is 8th of July, as you all know, and we are celebrating something that proves numbers can actually be exciting, Math 2.0 Day.
1: बिल्कुल सही कहा आपने. तो जब ज़्यादातर लोग मैथ्स यानी गणित शब्द सुनते हैं तो उन्हें तुरंत मुश्किल फॉर्मूले, कभी न खत्म होने वाली कैलकुलेशन और परीक्षा के तनाव की याद आ जाती है.
0: एग्जैक्टली, बट टुडे वी आर चेंजिंग दैट परसेप्शन.

0: Math 2.0 Day.
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो जब ज्यादातर लोग मैथ्स यानी गणित शब्द सुनते हैं तो उन्हें तुरंत मुश्किल फॉर्मूले, कभी न खत्म होने वाली कैलकुलेशन और परीक्षा के तनाव की याद आ जाती है।
0: एग्जैक्टली, बट टुडे वी आर चेंजिंग दैट परसेप्शन